0: सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास

0: यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नहीं है, तो अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभाव

0: Gov.in and News on AR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंद्राडीह खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति, आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड टी20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने लगातार 4,399 दिनों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,388 दिनों का था। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जमशेदपुर के सिंहभूम ताम्रपट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्राडीह माइंस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और देश का तांबा उत्पादन 2 गुने से अधिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
4: विषयवार समीक्षा किए हैं, SBM का अलग किए, JJM का अलग किए हैं, DMFT फंड का अलग किए, राज्य योजना का अलग किए, कई दिशा निर्देश भी, कई सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। कई विषयों पर तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उस पर हम लोग पालन करेंगे। हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसके लिए सरकार और विभाग निरंतर प्रयास कर रही है।
2: झारखंड के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार ने 8 वर्ष से अधिक पुराने या 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंसों को हटाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को 1 सप्ताह में ऐसे वाहनों की समीक्षा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने अपना फैसला आज सुबह 11 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इधर परिमल

0: नाथवानी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सभी आपत्तियों का जवाब दाखिल कर दिया है।
1: ये जो भी उनके क्वेरीज थे, तो ये क्वेरीज नॉमिनल क्वेरीज रहते हैं, जो रिटर्निंग अफसर को पावर भी है और किसी के शिकायत पर भी रिटर्निंग अफसर 36

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जीरामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: राज्य के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अब तक 59,340 BLA2 नियुक्त किए हैं। इसमें भाजपा ने 21,645, कांग्रेस ने 17,479 और झामुमो ने 14,482 नियुक्तियां की हैं। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के लिए उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के भीतर मॉनसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस बीच कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो समेत राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से रांची के JSES स्टेडियम में आगाज होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 14 दिनों के भीतर कुल 27 रोमांचक मुकाबले होंगे। खिताब के लिए कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। लीग की पूर्व संध्या पर रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी।
2: यंग टैलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और यंग टैलेंट्स को हम इंस्पायर भी कर सकें, इसके लिए 600 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है। देखते हैं, फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेज में भी छोटे स्कूल के बच्चे आएँ जो अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल हीरोज़ को देखें खेलते हुए और इंस्पायर हों कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकें।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र होल्ड पर रखे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव पर्चे में त्रुटियों की शिकायत, नाथवानी का नामांकन होल्ड पर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। प्रभात खबर ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, सरकार दुष्कर्म की घटनाओं से जन्मे बच्चों को दिलाए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। दैनिक जागरण लिखता है, आज से 444 बालू घाटों से उठाव पर रोक, निर्माण कार्यों पर संकट। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंदाडी खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम

फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड टी20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं बंगला लोकगीत। तो आइए सुनते हैं पुरंदास बाउल के स्वर में ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना निर्मलेंदु चौधरी के स्वर में ये बंगला लोकगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
0: और इसी के साथ श्रोताओं, लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक यहीं संपन्न होता है।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस पर और 10 जून के अवसर पर विश्व नेत्रदान दिवस पर। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस पर। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो विश्व में शांति, सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देने से जुड़ा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस। दोस्तों, मानव सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। इन सभ्यताओं ने अपनी संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और जीवन के मूल्यों के माध्यम से मानव समाज को समृद्ध बनाया। विविधताओं से भरी इस दुनिया में प्रत्येक सभ्यता की अपनी विशिष्ट पहचान है। लेकिन जब विभिन्न सभ्यताओं के लोग एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तभी वैश्विक शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं के बीच आपसी सम्मान, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो श्रोताओं, आज का विश्व अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। इंटरनेट और संचार के आधुनिक साधनों ने देशों और समाजों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही अनेक चुनौतियां भी सामने आई हैं। सांस्कृतिक टकराव, धार्मिक असहिष्णुता, नस्लीय भेदभाव और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं आज भी मानवता के सामने मौजूद है। ऐसे समय में सभ्यताओं के बीच संवाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। संवाद का अर्थ केवल बातचीत करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों, मान्यताओं और परंपराओं को समझने का प्रयास करना भी है। जब हम किसी अन्य संस्कृति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर सम्मान और सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। भारत इस संदर्भ में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारी संस्कृति सदियों से वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, की भावना को अपनाती रही है। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। यह विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो श्रोताओं, हमारा भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा संवाद, सहिष्णुता और समावेशिता को महत्व दिया है। प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग सीखने और विचारों के आदान प्रदान के लिए आते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सभ्यताओं के बीच संवाद हुआ है, तब तब मानवता को नई दिशा मिली है। ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य का विकास विभिन्न सभ्यताओं के परस्पर संपर्क और सहयोग से ही संभव हुआ है। इसके विपरीत, जब संवाद की जगह टकराव ने ले ली है, तब युद्ध, हिंसा और विनाश का वातावरण बना है। आज के वैश्विक परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हम भिन्नताओं को संघर्ष का कारण न माने, बल्कि उन्हें सीखने और समृद्ध बनाने का अवसर समझें। प्रत्येक संस्कृति और सभ्यता के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिससे पूरी मानवता लाभान्वित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस हमें यह संदेश देता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग की उपस्थिति भी है। यह दिवस हमें पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के ऊपर उठकर एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि बच्चों और युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में सही जानकारी दी जाए तो उनके भीतर सहिष्णुता और सम्मान की भावना की विकास होगा। इसी प्रकार मीडिया, साहित्य, कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संवाद को मौजूद बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी संवाद की संस्कृति को अपनाएं। परिवार, समाज, कार्यस्थल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुला और सकारात्मक संवाद अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो श्रोताओं, 10 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी विविधताएं ही हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। यदि हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करें तो एक अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और समृद्ध विश्व का निर्माण किया जा सकता है। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों का सम्मान करेंगे, संवाद को बढ़ावा देंगे और मानवता की साझा विरासत को सहेजने में अपना विशेष योगदान देंगे। तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस पर, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ
6: मोर नाम मंगलो राय को गाँव बारिगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
7: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
8: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाइया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
9: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनी में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरन गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल में
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: नमस्कार,
0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं और फिर से हाजिर हैं। और अब हम आज के 10 जून के दिवस विश्व नेत्रदान दिवस पर बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस। यह दिवस समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने तथा कॉर्निया अंधत्व से पीड़ित लोगों को नई दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेत्रदान को महादान कहा जाता है क्योंकि यह दान मृत्यु के बाद किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में उजाला ला सकता है। आज के समय में विज्ञान और चिकित्सा के विकास ने नेत्र प्रत्यारोपण को सफल बनाया है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संख्या में नेत्रदाताओं की आवश्यकता होती है। जागरूकता की कमी, सामाजिक भ्रांतियों और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान की दर अभी भी बहुत कम है। यही कारण है कि विश्व नेत्रदान दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। नेत्र प्रत्यारोपण का विचार 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुआ। विश्व में पहला सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण 1905 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद चिकित्सा विज्ञान में लगातार प्रगति हुई और आज कॉर्निया प्रत्यारोपण एक सामान्य एवं सफल शल्य चिकित्सा प्रक्रिया बन चुकी है। भारत में भी नेत्रदान आंदोलन धीरे धीरे मजबूत हुआ। अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आज देश भर में अनेक नेत्र बैंक कार्यरत हैं, जो दान किए गए कॉर्निया को सुरक्षित रखकर जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, नेत्रदान वास्तव में क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि पूरी आंख किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। नेत्रदान में मुख्य रूप से आंख के पारदर्शी भाग कॉर्निया को निकाला जाता है। कॉर्निया आंख का वह हिस्सा है जो प्रकाश को आंख के भीतर प्रवेश करने में सहायता करता है। यदि किसी कारण से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में स्वस्थ कॉर्निया का प्रत्यारोपण कर दृष्टि वापस लाई जा सकती है। हमारे देश में अंधत्व की समस्या तो है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में लोग दृष्टि संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं। कॉर्निया से संबंधित अंधत्व लोग लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से जनजात कॉर्नियल लोग संक्रमण के कारण, चोट के कारण, विटामिन की कमी के कारण, दुर्घटनाओं के कारण और रासायनिक जलन के कारण, ये सभी परिस्थितियों के कारण अनेक लोग अपनी दृष्टि को खो देते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जिनकी दृष्टि कार्निया प्रत्यारोपण द्वारा वापस लाई जा सकती है। तो नेत्रदान क्यों आवश्यक है? जिससे कि दृष्टिहीन व्यक्ति को एक नया जीवन मिल सके। दृष्टि हमारे मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय अनुभव है। देखने की क्षमता वापस मिलने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। दृष्टि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त कर सकता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। नेत्रदान ऐसा दान है जिसे दानकर्ता को कोई हानि नहीं होती, लेकिन प्राप्तकर्ता का जीवन बदल जाता है। तो श्रोताओं, नेत्रदान कौन व्यक्ति कर सकता है? लगभग हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। पुरुष, महिलाएं, युवा, वृद्ध, चश्मा पहनने वाले लोग, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके लोग सभी नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय नेत्र विशेषज्ञ द्वारा कॉर्निया की स्थिति जांच करने के बाद ही लिया जाता है। नेत्रदान की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और परिवार नेत्रदान की इच्छा व्यक्त करता है, तब निकटतम नेत्र बैंक को सूचना दी जाती है। प्रशिक्षित चिकित्सक घर या अस्पताल पहुंचते हैं। लगभग 15-20 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मृतक के चेहरे की सामान्य संरचना बनी रहती है। परिवार अंतिम संस्कार सामान्य रूप से कर सकता है। नेत्रदान से जुड़ी कुछ भ्रांतियां और तथ्य भी हैं, जैसे कि नेत्रदान से चेहरा खराब हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की जाती है। वृद्ध लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। अधिकांश वृद्ध व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। चश्मा लगाने वाले नेत्रदान नहीं कर सकते, लेकिन चश्मा पहनने वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताएं नेत्रदान की अनुमति नहीं देती। अधिकांश धर्म मानव सेवा और अंगदान को ही पुण्य कार्य मानते हैं। तो श्रोताओं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल एम्पायरमेंट के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा संचालित नेत्र बैंक दान किए गए कॉर्निया का संग्रह करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं और ज़रूरतमंद मरीजों तक पहुंचाते हैं। नेत्र बैंक नेत्रदान अभियान की रीढ़ है दोस्तों। युवा वर्ग इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाकर, परिवार और मित्रों को प्रेरित कर, नेत्रदान प्रतिज्ञा अभियान में भाग लेकर, विद्यालयों और महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। अन्नदान, विद्यादान और रक्तदान की तरह नेत्रदान भी महादान माना जाता है। यह केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और मानवता का प्रतीक भी है श्रोताओं। तो विश्व नेत्रदान दिवस हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। मृत्यु के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे द्वारा दान की गई आँखें किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर सकती है। तो विश्व नेत्रदान दिवस केवल एक जागरूकता का दिवस नहीं, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है दोस्तों। भारत जैसे विशाल देश में, जहां लाखों लोग कॉर्निया अंधत्व से प्रभावित हैं, वहां नेत्रदान की आवश्यकता और भी अधिक है। यदि प्रत्येक परिवार नेत्रदान के महत्व को समझे और इसके लिए संकल्प ले तो हजारों लोगों के जीवन में नया उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान करें, किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन करें। मृत्यु के बाद भी आपकी आंखें किसी के सपनों को नई उड़ान दे सकती है श्रोताओं। तो अभी हम बात कर रहे थे विश्व नेत्रदान दिवस पर, और अब सुनते हैं ये संदेश।
10: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
11: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रसरंजन का। तो आइए आनंद लीजिए हमारे रसरंजन कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना समीर का लिखा नदीम श्रवण के धुन पर अलका याग्निक और केकी का गाया फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए का ये गीत। और अब सुनवा रहे हैं आपको अतीफ असलम का गाया सबीर अहमद का लिखा तनिष्क बागची के धुन पर फिल्म लव यात्री का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों का गाया फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत। और अब सुनते हैं ये संदेश।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब श्रोताओं सुनते हैं लता मंगेशकर और एमजी श्री कुमार का गाया फिल्म दिल से का ये गीत।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: और अब श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म त्रिशूल का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है कुछ ही पलों में प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
0: फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
2: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
2: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
2: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए, फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
1: हाँ चलो
0: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
0: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
1: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
0: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
1: अच्छा कमल जी,
2: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब?
0: मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।
8: अलका नमस्कार। जोहार। और उषा जी आपको भी नमस्कार। जोहार।
9: आपको भी नमस्कार रेणु जी, और हम अपने सभी श्रोताओं को उनके इंतजार को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
8: हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छा सुविचार से।
9: बिल्कुल।
8: संस्कृत में सुविचार है, पदे पदे च रत्नानी योजने रस कूपिका भाग्यहीना न पश्यंती बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात ये वसुंधरा कदम कदम पर अमूल्य रत्नों से भरी हुई है, लेकिन भाग्यहीन मनुष्य ये देख नहीं सकता।
9: और मनुष्य अपने आँख, नाक, कान और दिमाग खुला रखे तो हमारे चारों ओर बिखरे जीवन के अमूल्य रहस्य को पा सकता है, जान सकता है उसके बारे में। और ये ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के नए नए सोपान तक पहुंचाने का मार्ग खोलने में समर्थ है।
8: सच में जीवन की दिशा और दशा दोनों में ही सकारात्मक बदलाव और नजरिए की दरकार है। जीवन में आनंद का अमूल्य खजाना खुला हुआ है, तब भी हमारी नजर नहीं पड़ती।

0: एनआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: और रेणु जी, संदेश के बाद तो बस बहुत सारी बातें अब निकलने लगती है ना, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है जोहार रांची, जो जानकारियों से भरा है और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोताओं से करते भी हैं। और अभी मन कर रहा है कि थोड़े से मौसम के बारे में बात।
3: हाँ, तो सुबह से मौसम ऐसा था ना उषा जी कि काफी बादल छाए हुए थे, लगता है अब बारिश होगी।
2: काले बादल छाए हुए थे सुबह सुबह, तो
3: अब बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, बस बादल छाए रहे।
2: तो बस इसको कहते हैं ना, आंधी का असर है कि बहुत तेज आंधी, अगर हवा की रफ्तार तेज होगी तो वो सभी भाग ले गया बादल को, और जहां पर ले गए वहां पर बारिश होगी, उन्हें आनंद आएगा बारिश का। चलिए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। वैसे रांची समेत पूरे राज्य में बुधवार से मौसम में बदलाव संभव है, वो जो आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है। और 15 से 17 जून तक झारखंड में संताल परगना के रास्ते मानसून के प्रवेश करने की संभावना है।
3: और मौसम विभाग के अनुसार ना, आज से कोडरमा, हजारीबाग को छोड़कर अन्य जिलों में बादल छाए रहने और वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है।
2: और जब इसी संभावना की ही हम बातें करते हैं, तो इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है रेणु जी। और वहीं 11 को रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, बादल, वज्रपात और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसे ही देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 12 जून को भी बादल छाए रहेंगे। और वज्रपात की तो बात ही ना कहें, जब बादल छाते हैं और इस महीने में वज्रपात होती है, आंधी तूफान आते ही हैं। कहने का मतलब ये है रेणु जी कि हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए, येलो अलर्ट नहीं, एवरी टाइम अलर्ट। कि जब भी बारिश की और तूफान की जब संभावनाएं नजर आए तो आकाश देखते ही पता चल जाता है। तो आप जब आंधी तूफान तेज हो तो पेड़ के नीचे न रहें, किसी पुराने घर के नीचे न रहें, अपने पशुधन को बचाए रखें और छोटे छोटे बच्चों को भी संभालें कि आंधी तूफान का समय है, बाहर नहीं निकलो।
3: क्योंकि ऐसे भी अब प्री मानसून का आगाज
2: हो ही गया है। तो ये मॉनसून आते ही आते बहुत सारी सावधानियां हम सबको रखनी पड़ती है कि अपने को बच के रहना, अपने स्वास्थ्य को बचा के चलना है, खान पान पे।
3: ऐसे में होता है ना कि घर से निकल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो लगता है क्या ढोने के चक्कर में छाता नहीं ले जाएं,
2: लेकिन पानी क्यों ले जाएं। लेकिन बाहर जाएं तो आप छाता अपने साथ, बरसाती कुछ भी लेकर जाएं। और साथ ही साथ जब बारिश होने लगे ना, तो हमेशा कहा जा रहा है ना कि पेड़ के नीचे ना रहे, जब वज्रपात की संभावना होती है तो गीले स्थानों पर ना रहे, अपने पशुधन को भी बचा कर रखें ताकि जान माल की हानि ना हो।
3: बस सावधानी के साथ,
2: बस सावधानी ही सतर्कता है और इससे ही हम बचें तो इस मौसम का आनंद लेंगे। तो लेते हैं इस गीत के साथ आनंद।

0: रेनू जी, जब मौसम की बात आती है ना तो बहुत सारी चीजें इस मौसम में मिलती है, उसकी भी याद आ जाती है।
1: हाँ, अभी तो ये आम का दौर चल रहा है ना, ये

0: लीची और
1: हुए
0: इसकी मिठास,
1: जामुन।
0: है ना,
1: हाँ
0: और जामुन की। और ये हमारे शरीर के लिए भी कितना फायदेमंद है, क्योंकि भगवान ने समय समय पर, मौसम मौसम पर नए नए फलों को भी दिया है, ताकि इसका उपयोग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन आम खाने से स्वस्थ थोड़ा थोड़ा बिगड़ भी जाता है ना, कि
1: हाँ
0: थोड़े वजन
1: ज्यादा
0: बढ़ जाते हैं, जिन्हें शुगर है उन्हें इसे खाने पर रोक लग जाती है। और लेकिन आम की जो बात है ना, आम देखते ही मन को बस लुभाने लगता है कि ये कौन सा आम है जिसे हम खाएं। वैसे तो केसर की बात करें ना, तो केसर आम अभी भी देशों में भी काफी प्रचलित है, और
1: हाँ
0: उसके बाद नंबर आ गया है अब आम्रपाली का। ये भी
1: हाँ
0: विदेश में अपने परचम को लहराएगा, और इसके लिए हमारे सिमडेगा के जो किसान भाई हैं, उनकी जो मेहनत है और ग्रामीण परिवारों की जो तकदीर है, दोनों चमक रही है ना। और इस सीजन में सिमडेगा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 81 टन आम विक्रय करके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है। और इसी सप्ताह आम की एक और खेप यूके के लिए और दूसरी खेप यूरोप के लिए भेजी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू कारपोरेट बाजार को
1: गांव
0: मतलब
1: की
0: इस आम को पहुंचाने में हमारा जो मार्केटिंग है, सिस्टम है, वो कितना सफल साथ दे रहा है,
1: और कितना ये मेहनत
0: ताकि
1: कर रहे हैं वो
0: हाँ
1: सिमडेगा के जो परिवार
0: किसान
1: हैं,
0: भाई हैं,
1: किसान भाई
0: पूरे
1: हैं जो।
0: परिवार हैं। तो देखो, मेहनत करने का जो फल है ना, वो हमें जरूर मिलता है। और जब विदेश में हमारे देश के और खास करके गांव के आम जाएंगे,
1: वो भी
0: तो हमारे
1: झारखंड सिमडेगा
0: झारखंड के,
1: से
0: हाँ, तो फिर ये सुनकर ही हमें बहुत खुशी
1: खुशी
0: हो
1: होती
0: रही
1: है।
0: है। तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज के लिए हमारे देश की पहचान बाहर में बन रही है, और बनती भी रहे, ऐसा हम चाहेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है मेहनत की। तो ये रही आम्रपाली का स्वाद, वहां भी मिलेगा, और यहाँ के लोग तो इसके स्वाद पाते ही है
1: पाते
0: ना।
1: ही है यहाँ तो, कई
0: वैसे
1: तरह के और भी आम
0: हाँ,
1: आते
0: और
1: हैं
0: भी
1: अभी।
0: आम है,
1: हाँ
0: मालदा आम है, गुलाब केसर है, दशहरी है ना, लंगड़ा आम है, ये सब यहाँ की खूबसूरती है आम की और उसके स्वाद की। तो समय आने पर सभी लोग इसका आनंद तो उठाते ही हैं, अब विदेशों में भी इसका आनंद सभी लोग उठाएंगे। और इतना अच्छा लगता है ना, कि जो लोग मेहनत करते हैं और बाहर में इसका नाम होता है। और
1: और
0: इसी मेहनत में एक और
1: 3 दिन
0: मतलब,
1: का जो कृषि व्यापार मेला जो चल रहा है ना, वो 16 से शायद शुरू होने वाला
0: हाँ,
1: है।
0: 16 से शुरू होंगे,
1: हाँ
0: लेकिन उसकी तैयारी भी अभी
1: जोर
0: से
1: शोर से
0: होने
1: हो रही
0: लगती है
1: है।
0: ना, क्योंकि इसमें दूसरे राज्यों से भी करीब 50-60 के करीब डेलीगेट्स भी आ रहे हैं।
1: अच्छा
0: लोग अपने अपने राज्य के बारे में बताएंगे कि कैसे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि भी आम की बात हुई, तो इसमें भी बहुत सारी परिचर्चा हुई होगी, बहुत सारी जानकारी लेकर
1: हाँ
0: हमारे
1: बैठक हुई
0: किसान भाई
1: होगी
0: आगे बढ़े होंगे, तब इतना खूबसूरत आम मिल गए हैं और बाहर
1: हाँ
0: जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से ये कृषि व्यापार मेला भी जब लगेगा, तो कोने कोने से नई नई तकनीक, नई नई जानकारी, कृषि उपकरण और इससे संबंधित कई तरह की बातें लोगों के बीच में आएंगी। और इसे अपनाकर हमारे किसान भाई फिर से अपने किस्मत को आजमा के आगे बढ़ेंगे।
1: और कृषि वैज्ञानिक भी इसमें हिस्सा लेंगे।
0: जानकारी देने के लिए,
1: हाँ, और झारखंड
0: तो
1: के किसानों को नई तकनीकी की जानकारी और कृषि उपकरण के इससे संबंधित क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी इसे मिलेगी। काम करने की बात काफी होगी।
0: हाँ, तो इसी के स्टॉल भी लगेंगे मेला परिसर में, उसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और आपको पता है रेणु जी, कि जब कृषि व्यापार का जब मेला लगता है ना, तो मैं भी जाती हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे भी खेती बाड़ी नहीं, लेकिन कुछ फूलों की खेती, कुछ किचन गार्डन की खेती का बहुत शौक है। तो वहां पर ऐसा लगता है ना, कि हमने भी एक ही पेड़ लगाया है आम का, और वो भी आम्रपाली की, तो उसमें क्या खासियत और हो सकती है जिससे आम ज्यादा
1: वाह
0: आए। तो थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं भी जरूर जाती हूँ मेले, और आप भी जाएं,
1: ये तो होता
0: ताकि
1: ही है ना कि मेले में
0: हाँ,
1: तरह तरह की
0: जानकारी, वैरायटी
1: वैरायटियां
0: मिलती है, और जो आपको हर समय नहीं मिलती है वो मेले में मिलती है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वहां पर लोग आते हैं और अपने अपने विचार साझा करते हैं, जानकारी देते हैं। तो इससे अछूता कभी नहीं होना
1: मेला
0: चाहिए।
1: का अलग ही आनंद ही है।
0: हाँ, और जब इस तरह के कुछ गीत जो आप सुनवाने वाली हैं ना, अगर वो हो जाए ना, तो लगता है कि बस कल ही मेला जाना चाहिए।

0: जानकारी हमें मिलती है। तो अपनी यादों के पन्ने पलटिए तो आपको जानकारी मिलेगी, और कुछ किताबों के पन्ने पलटिए तो इतिहास में भी बहुत कुछ लिखा है। तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आज क्या विशेष है। आज के दिन इतिहास में क्रिकेट से लेकर विज्ञान तक की कई घटनाएं दर्ज हैं। 1972 ईस्वी में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था, यानी इसे समुद्र में उतारा गया था। 1983 ईस्वी में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पुनः प्रधानमंत्री बनी थी। 2002 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन रोम में संपन्न हुआ था।
1: और 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा का सामुदायिक विकास में संबंध दो समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और 2008 में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी। और 2008 में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से लगे रहो मुन्ना भाई का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था।
0: और जन्म की बात करते हैं तो 1931 में M.S. गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। 1955 में भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था। और 1958 में आज ही के दिन साहित्यकार अनूप सेठी का जन्म हुआ था।
1: और 1981 ईस्वी में देवेंद्र झाझरिया का जन्म हुआ, जो भारत के एथलीट हैं। 1921 ईस्वी में शिवदीन राम जोशी का जन्म हुआ, जो अपने समय के जाने माने कवि थे। और 1888 ईस्वी में क्रांतिकारी बलराज भल्ला का जन्म हुआ।
0: और 1890 में गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन 1906 ईस्वी में।
1: और आज ही के दिन रूप कुमार राठौर का जन्म 1959 ईस्वी में हुआ। आज ही के दिन वे गायक और संगीतकार हैं। उन्हें बॉर्डर फिल्म के संदेशे आते हैं, रब ने बना दी जोड़ी के में तुझसे रब दिखता है, और अनवर मौला मेरे मौला जैसे गानों के लिए जाना जाता है।
0: और उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी और कन्नड़ फिल्मों में कई गाने गाए हैं। तो हमें लगता है कि एक प्रचलित गाना जो बॉर्डर फिल्म का है, वो हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: रेणु जी, ये तो थे जन्म की बातें और हम नमन करते हैं उन्हें जो आज ही के दिन अलविदा हुए थे। 1957 में भाई वीर सिंह का निधन हुआ था, जो पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। 1987 ईस्वी में जीवन का निधन हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे। उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था।
1: उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए काफी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1950 के दशक की फिल्मों में देवर्षि नारद मुनि की भूमिका 49 बार निभाई थी। अपने चेहरे की बनावट को हीरो के अनुकूल न मानकर उन्होंने खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। जॉन, मेरा नाम, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, लवारिस जैसी फिल्मों में उनके खलनायक के किरदार बहुत प्रसिद्ध हुए।
0: और आप हैं 2019 में आरवी जानकी रमन का निधन आज ही के दिन हुआ था। 2019 में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ था, जो कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता थे। नाटक नागमंडल, हे वदन, तुगलक और ययाति उनके प्रसिद्ध नाटक थे। कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में दोनों इनकी लेखनी समानाधिकार से चलती थी।
1: और एक अभिनेता और कथा के लेखक के रूप में उनकी शुरुआत कन्नड़ फिल्म संस्कारा से हुई, जिसे पहला राष्ट्रपति स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला था। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म वंश वृक्ष, जो 1971 में आई थी। इसके अलावा उन्होंने निशांत और मंथन जैसी क्लासिक हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। भारतीय टेलीविजन पर मारगुडी डेज में स्वामी के पिता की उनकी भूमिका विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। साहित्य और कला जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1988 ईस्वी में मिला था और उन्हें कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
0: और गिरीश कर्नाड द्वारा जो निर्देशित फिल्में थी, स्वामी, उत्सव, अग्निवर्षा, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, इकबाल, सुर संगम और मेरी जंग, और भी ऐसी कई फिल्में हैं, शिवाय, हे राम, पिपली लाइव, चाइना गेट और पुकार। मेरी जंग फिल्म से चलिए हम अपने श्रोताओं को ये प्यारा सा गाना सुनवाते हैं।

0: रेनू जी, जब हम बातें करते हैं ना कि जिंदगी की, तो जिंदगी का सबसे अहम चीज क्या है हमारी जिंदगी में पता है?
1: हाँ, आँखें।
0: और ये आंखों की जब बात करते हैं ना, तो कितने सारे गीत, कितनी सारी बातें आंखों से जुड़ी होती है। और हर साल इन्हीं आंखों को लेकर 10 जून यानी आज के दिन विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें यानी कॉर्निया दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले बताते हैं नेत्रदान क्या है। ये नेत्रदान में पूरी आंख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया यानी पुतली का जो पारदर्शी हिस्सा होता है ना, उसका दान होता है और उसे ही प्रत्यारोपित किया जाता है दूसरे के आंखों में। और दान की गई कॉर्निया से किसी कॉर्नियल दृष्टिहीन व्यक्ति यदि अपनी पुतली खराब हो गई है उसकी, तो उसे नई रोशनी मिलती है। और लोगों को मन में ख्याल आते हैं कि नेत्रदान कैसे करें, कोई जीवित व्यक्ति कैसे दान करे, लेकिन इसके लिए जीवित में दान करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: बस कोई भी व्यक्ति जीवित रहते हुए किसी भी पंजीकृत आई बैंक में भरकर नेत्रदान का संकल्प ले सकता है और दाता की मृत्यु के बाद ना 4 से 6 घंटे के भीतर

0: की नेत्र बैंक को सूचित करना आवश्यक है।
1: तो इसके लिए ना रेणु जी पहले अपने घर परिवार को जरूर इसकी जानकारी दे देनी चाहिए कि कभी अकस्मात अगर जिंदगी खत्म हो गई तो उनके नेत्रदान किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है
0: वहाँ हॉस्पिटल में जाके खबर कर दें।
1: हाँ, मृत्यु के 1-2 घंटे के अंदर ही तुरंत करें ताकि वो भी आके दूसरे को प्रत्यारोपित कर सकते हैं।
0: हाँ, ताकि वो मतलब घर आके 1-2 घंटे भी नहीं, उषा जी डॉक्टर तो घर आके अस्पताल में मात्र 15 से 20 मिनट में का कॉर्निया निकाल लेते हैं। हाँ, जिससे चेहरे की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग डरते हैं कि हम दान करेंगे
1: हो जाएगा।
0: लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति।
1: मुझे तो ऐसा लगता है ना रेणु जी कि मरने के बाद हमारे चेहरे की खूबसूरती जाए या न जाए, हमारे जो कर्म है ना उसकी खूबसूरती बची रहे है ना।
0: हाँ, और ये नेत्रदान जो है ना कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी ब्लड ग्रुप का कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि अपने परिवार के सदस्य को जैसा भी कि इच्छा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।
1: हाँ, और इच्छा भी है और रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए
0: ताकि आई बैंक को सूचित कर सके,
1: तुरंत सूचित कर सके।
0: और ये मधुमेह है, जो उच्च रक्तचाप है, मोतियाबिंद का इलाज करा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं।
1: और नेत्रदान पता है ये महान और निस्वार्थ कार्य है जो मरने के बाद किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर सकता है और एक सुरक्षित प्रक्रिया है। और पता है जब आप नेत्रदान करते हैं तो आपके बाद भी आप जिंदा रहते हैं अपनी आंखों के द्वारा।
0: हाँ, दूसरा कोई देख सकता है। ये जो जिंदगी है ना उसको संभाल कर रखना है क्योंकि बहुत अनमोल है।
1: हाँ,
0: अपनी आंखों के द्वारा, किसी अंग के प्रत्यारोपण के द्वारा
1: छोटी सी जिंदगी को बचा कर रखिए। और एक प्यारा सा गीत भी सुनते चलिए।

0: उषा जी, आज तो और भी दिवस है।
1: हाँ हाँ, तो चलिए चलते चलते जल्दी जल्दी इन दिवस के बारे में भी जानकारी अपने श्रोताओं को दें कि आज यानी 10 जून को राष्ट्रीय बॉल पॉइंट पेन दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिन लेखन में क्रांति लाने वाले इस उपकरण और 10 जून 1943 को बिटो बंधुओं द्वारा इसके पेटेंट दाखिल किए जाने की याद दिलाता है।
0: ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता ही वो याद है ना, कलम की ताकत को जो बताते हुए जो लिखते हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति किया विजय अपार, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाले वाली।
1: और दिल की ये दिल में ही नहीं सिर्फ दिमाग में भी आग लगाने वाली आज मैसेज का जमाना है। और ये पेन पता नहीं कहाँ गुम होता जा रहा है, लेकिन पहले खत कलम से लिखकर ही भेजा जाता था, अपनी भाषाओं में अपने दिल की भावनाओं को उसमें उकेरा जाता था और ये उसी में समाहित होती थी। लेकिन पता है ना रेणु जी कि कलम जो है ना उसकी ताकत हर दिन रहेगी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो काम तलवार ना करे वो कलम कर देता है
0: एकदम।
1: तो कलम में वो शक्ति है, बस वो कलम ही नहीं है, वो समझ जाइए तो उससे सब कुछ विनाश भी हो सकता है और उससे सब कुछ बच भी सकता है ना। तो इसलिए कलम की ताकत को पीछा और कमजोर मत समझिएगा।
0: अब बचाने की बात बोली तो एक और ख्याल आया कि भाई आज कि हम लोग को पानी बचाने की जरूरत है।
1: भाई वो तो जिंदगी बचाने की बात आप कर रही हैं, वो पानी नहीं है, वो जिंदगी है, क्योंकि आज जल का जो जितनी जल संकट हो रहे हैं, और जैसा कि आज हमने भी पेपर में भी पढ़ा कि 200 फीट नीचे पानी चला गया है भूगर्भ जल का स्तर, तो समझ जाइए कि अगर ऐसे तेजी से पानी अगर नीचे चला जाएगा तो आने वाले समय में गर्मी तो क्या, हम जाड़े में भी पानी की तकलीफ को झेलने के लिए हमें पड़ सकता है। इसीलिए हमें जल को बचाना है, जल है तो कल है और जल है तो जीवन है, इसीलिए आज बचाएंगे तो कल पाएंगे, आज बहाएंगे तो कल पछताएंगे। वाह कितनी अच्छी बात है, तो जल संरक्षण ही बस एक विकल्प है। और भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और आज ही के दिन विश्व भूगर्भ जल दिवस भी हम सभी मना रहे हैं। तो इसे मनाना नहीं है, इसे संकल्प लेना है कि इस धरा को, इस जीवन को और इस मानव जीवन को बचाने के लिए हमें जल संरक्षण करना होगा। अगर हम जो बहते पानी का अगर फिर से जमीन पर उसको मतलब बचाने के लिए उपाय करें, सोकपिट बनाएं, या फिर जल को बरसात के पानी को जो अगर हम बचा लेते हैं तो वो जमीन में सोख लेगा और नीचे का जो जल स्तर है जो गिर रहा है वो फिर से आ जाएगा और हमें पानी की कमी नहीं होगी।
0: और लोगों को ये समझना भी होगा कि पृथ्वी के नीचे का अदृश्य जल जो है हमारी पारिस्थितिकी और कृषि का आधार वही है। हम सब जागरूक होंगे, भूमिगत जल के महत्व और उसके दोहन को संरक्षण के प्रति सबको जागरूक भी करना होगा। हम तो खुद जागरूक हैं, दूसरे को भी करें। तो कहते भी है ना, जल है तो कल है, जल बचाओ
1: तो जीवन बचाओ,
0: बूंद बूंद से सागर बनता है, पानी बचाना हमारा कर्तव्य है।
1: भाई देखिए, जल की जितनी भी बातें करें हम वो कम है, क्योंकि जल हमारी प्रकृति की अमूल्य देन है और वो जल स्तर के रूप में धरोहर में है, उसे हमें बचाना है किसी भी परिस्थिति में।
0: क्योंकि पीने योग्य पानी भी तो मुख्य स्रोत भूगर्भ जल ही है पृथ्वी के उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हर संभव योगदान हम लोग को देना है। और आज हम लोग को संकल्प लेना है कि पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे
1: और पेड़ पौधे भी लगाएं, क्योंकि जितना पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो पानी को लेकर जमीन में अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करेंगे।
0: जैसे बारिश के महीने में लगाएंगे तो पौधों को प्राकृतिक रूप से जो पानी मिलेगी
1: और जल स्तर भी बढ़ेगा उससे, और ऐसे

0: भी है ना कि वर्षा का जल को भी हम चाहें तो बचा कर रख सकते हैं और उसका भी उपयोग आप बहुत सारे अपने मतलब कि दिनचर्या के काम में उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ
1: इतिहास
0: जल
1: के पन्ने,
0: है तो कल है
1: कल है,
0: और
1: इतिहास का पन्ना यही पलट देते हैं बंद करते हैं।
0: और बहुत सारी जानकारी भी रेणु जी ऐसी है, तो फिर जब कल से कल की बात आप कर रहे हैं तो हम ये भी बता दें कि कल से शुरू होने वाला है फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ और अर्जेंटीना खिताब बचाने के लिए उतरेगा फीफा विश्व कप स्पेशल में। और कल से जब शुरू होगा 39 दिन के लिए दुनिया की रफ्तार थमने वाली है, दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, फुटबॉल की हर किक के साथ ये धड़केगी। खेल के इतिहास में सबसे बड़े भव्य और सबसे रोमांचक फीफा विश्व कप का कल से आगाज होने वाला है। हाँ। और कल की बात छोड़िए, पहले आज
1: ही का भाई ये तो बहुत ही
0: गौरव की बात है कि हमारे झारखंड क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित पहली झारखंड T20 क्रिकेट लीग का भव्य आगाज आज JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।
1: हाँ, और इसका माही करेंगे झारखंड T20 लीग का आगाज और कनिका कपूर के लाइव कॉन्सर्ट से गुलजार होगी ओपनिंग सेरेमनी। दर्शकों का प्रवेश इसमें निशुल्क है
0: और तो फिर जाकर इसका आप मतलब आनंद उठाइए। 2 सप्ताह तक क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच, चौके, छक्के और कड़े मुकाबलों का भरपूर मनोरंजन मिलेगा और साथ ही साथ आप यहां पर आकर अपने मुकाबलों को देखकर अपने खेल के जो प्यास है उसे आप बुझा सकते हैं।
1: और हर दिन खेले जाएंगे 2 मुकाबले।
0: हाँ।
1: मतलब लीग चरण में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे।
0: हाँ।
1: पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे से और दूसरा शाम 7:30 बजे से। और 22 जून को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे जबकि 23 जून को रात 7:30 बजे फाइनल के साथ चैंपियन टीम का फैसला होगा। तो इसी तरह खुलेंगे
0: अपने खेल के द्वार खुलेंगे, खेल प्रेमियों के आशाओं के द्वार खुलेंगे और हम चाहते हैं कि एक प्यारा सा गीत का द्वार आप खोल दें।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ आज का जो हर रांची कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत उषा जायसवाल और
1: रेणु को। नमस्कार जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के इस गीत से. आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है. इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किए एचटी परवन ने. सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सीसीएल बड़काकाना से रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना बाबू, आर के वर्मा. कुड़ू से आप हैं मोहम्मद ब्यास, भाई इरशाद, सरफाज बाबू, जुनाब आलम और रोशिनी रामा. बड़काकाना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता और पूनम. आइए आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना.

कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शमाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। ग्राम ओहद से योगेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, रामेंद्र कुमार सिन्हा, सुभाष चंद्र कुमार, डॉक्टर ब्रजकिशोर महतो, सावित्री देवी, गायत्री देवी, सरोज देवी, अक्षय, अभिजीत, रुवि, निधि, नेहा और उनके सारे दोस्त। सिदरौल से आप हैं दीप, संदीप, मधु, मालती, संजय, सुमित, समीर, सुमन, अलका, मनीष, अनीमा, अनीता, पूनम, ज्योति, संध्या, आरती, नीलिमा, अंजलि, पारुल, संगीता, पीयूष, अतुल, दीपक और ढेरों साथी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शब्दों में पिरोया आनंद बख्शी ने, संगीतवत किया एच डी परवन ने।

अगला गाना सुनते हैं फिल्म मिली से, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है, शब्द रचना योगेश के, धुन बनाई है एसटी बर्मन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बड़का काना से अंजुम जमाल, टिंकू, मोहम्मद इकबाल, सहनाज इब्राहिमी, इकबाल राज, आसिफ बाबू, आसिफ इकबाल, मोहम्मद इकबाल मलिक, लोहाडी नामकुम से कृष्ण कुमार, राजकुमार, भुवनेश्वर, सुमित, बजरंगी, अरविंद, नकुल, अनिल, संतोष और सभी सदस्य, ग्राम और मांझी से ललित ठाकुर, अशोक पांडे, अनिल कुमार, ललन ठाकुर, मोहन वर्मा, सीताराम गोपी और जगेश्वर सिंह। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मिली का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम नरकोपी बाजार से फैजुल आलम, नौशाद आलम, खुर्शीद आलम, गुड़िया और पप्पू, ग्राम किरेगरी से पवन कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रवीण, बबली, जयंती, अजय कुमार गुप्ता, संध्या कुमारी, रमजान मियां सेठ, अली खान, मोकी कुमार, निक्की, प्रिंस, मौसमी और घर के सभी सदस्य, ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना देवी, पिंकी कुमारी, संजू कुमारी, मंजू कुमारी, सोनी सिंह, रीता, गीता, सीता और परिवार के सभी सदस्य, ग्राम चटक से संदीप कुमार और परिवार के सभी सदस्य, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मुस्कान से ये गाना, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीत पथ किया निखिल विनय ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। तो आशा का दामन हमेशा थामे रहिए और रोज मिलते रहिए हमसे अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी के माध्यम से।
1: हाँ सखियो, आज के जो मुलाकात है इस सफर में, हम मुखातिब हैं आपसे दो सखियाँ, मैं महजबीन और हमारे संग है सुभाषिनी। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार।
0: बहनों, कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, चाहे वो हमारे जीवन में हो या फिर मौसम में। जून का महीना है और गर्मी अपने चरम पर है ना?
1: हाँ सुभाषिनी, लेकिन साथ ही मानसून यानी बारिश की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। यानी कि हम कहें तो ऐसा लगता है ना कि अब बारिश होगी, अब गर्मी पड़ रही है, अब आंधी चल रही है। यह दोहरे मौसम का बदलाव शरीर के लिए और भी संवेदनशील होता है।
0: बिल्कुल सही। एक तरफ जहाँ चिलचिलाती धूप और उमस से शरीर को थकावट पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली बारिश तापमान गिरा देती है। मौसम का ये उतार चढ़ाव हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
1: बहनों, बदलते मौसम और भीषण गर्मी के दौरान स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आप हाइड्रेट रहें और सही खान पान अपनाएं और धूप से अपना बचाव जरूर करें।
0: दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए बहनों। सादे पानी के अलावा आप नींबू पानी या फिर ORS, छाछ, लस्सी या फिर नारियल पानी का भी सेवन कर सकती हैं।
1: और अपने आहार में तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे यानी कि मौसमी फल या मौसमी सब्जी जरूर ले। पानी से भरपूर फलों का को भी शामिल करें।
0: हाँ।
1: तला भुना मसालेदार जो सब ये होते हैं ना, चटपटे चीज।
0: हाँ।
1: और बासी खाना खाने से बचे। और यहाँ पे एक बात बताना जरूरी, हम समझते हैं कि ये आहार है आपके जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम के लिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और बाहर के जो कटे हुए फल या खुला हुआ

0: पानी जो रहता है ना उसको पीने से बचें, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहने ताकि शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके।
1: हाँ बहनों, साथ में ये भी ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, और यदि अगर बहुत ज़रूरी काम है, बाहर जाना ज़रूरी है, तो छाता, धूप का चश्मा और टोपी का उपयोग ज़रूर करें, यानी कि आप अच्छी तरह से अपने आप को ढक लें। चाहे तो सनस्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये भी बात ज़रूरी हम आपको बता देते कि ये बीच में जो दोपहर की जो धूप पड़ती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल, बदलते मौसम में वायरल और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित रूप से साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। एसी से निकलकर अचानक धूप में ना निकले, क्योंकि अचानक तापमान में बदलाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है।
1: और बहनों, ये हम जो सारी बातें बता रहे हैं, गर्मी में आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से आपको पानी पीना है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। बच्चों और बुजुर्गों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है ना, इसलिए उनका खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम में बदलाव से शरीर में वैसे ही थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। बहनों, मौसम का असर तो शरीर पर दिखता है, और इस पर अगर आप ध्यान नहीं दें तो आपको खुद से लगेगा कि हम बीमारी बीमार से लग रहे हैं। ज़्यादा व्यायाम से बचें, और सुबह शाम टहलिए ज़रूर, यानी कि आप अपनी बॉडी को अपने मौसम के अनुकूल बनाने की कोशिश
0: कोशिश
1: जरूर
0: करें।
1: करें।
0: बिल्कुल, और बहनों गर्मी बहुत है, साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो घबराए नहीं, सावधानी बरतें। वर्तमान में सूर्य देव के तीखे तेवर ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है, लेकिन इसी तपन के बीच राहत की उम्मीद भी छिपी है। बस कुछ ही दिनों में मानसून की पहली फुहारें इस तपती धरती को शांत करने आ रही है बहनों, तो आशा का दामन थामे रखिए।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और सुभाषिनी अब हमें बताएंगे कि आगे प्रोग्राम में क्या है।
4: आगे बहनें जानती ही हैं कि अब वक्त है भेंट वार्ता का। तो बहनों, आज का विषय है लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर अर्चना पाठक, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी मैजबी।
3: बहनों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आज हम जानकारी देंगे लू पर। गर्मी इतनी शिद्दत से पड़ रही है और जाहिर सी बात है कि लू भी, लोगों को लू भी लग रही है। तो हम आपको जानकारी देंगे कि लू से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में हम जानेंगे। मिलिए आज की मेहमान से। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर अर्चना पाठक। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार
3: मैम। हमारी सभी बहनों को ये जानकारी दें कि लू कौन से महीने में सबसे ज्यादा चलती है, यानी कि हम कहें कि गर्मी की शुरुआत तो देखा जाए तो मई या अप्रैल के लास्ट या मई से शुरू हो जाती है
5: जी।
3: तो आप इसे किस तरह से समझाएंगे कि ये लू का चलना कब से शुरू होता है?
5: अगर देखा जाए तो भारत में जैसे सामान्यतः अप्रैल से जून के बीच में लू सबसे ज्यादा चलती है, और मई और जून में इसका प्रभाव काफी अधिक होता है। ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दोपहर का जो समय होता है 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो इसमें विशेषकर अगर कोई जरूरी काम नहीं हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज रहती है और लू लगने की संभावना भी ज्यादा रहती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को लू लगने का खतरा अधिक होता है इसमें।
3: लू इतनी अगर सावधानी के बाद भी लू लग जाती है तो हमें क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए?
5: सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मरीज को तुरंत कुछ ठंडा, हम अगर मरीज पीने की अवस्था में है तो उसे हम ORS का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं या फिर नारियल का पानी दे सकते हैं। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर देना चाहिए, या फिर ठंडे पानी से पानी, जो ठंडा पानी होता है उसकी पट्टी माथे पे जरूर रखनी चाहिए। शरीर में बहुत टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, शरीर में ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। मरीज जो रहता है उसको तुरंत किसी ठंडी जगह पे ले जाएं और उसे पंखे या कूलर की हवा जरूर दे सकते हैं, और जो शरीर का तापमान है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि और ये भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उन्हें जल्दी से ORS का पानी दे या नींबू पानी दे, इसका ध्यान रखना चाहिए।
3: मैम, इससे बुखार बहुत तरह के होते हैं, और इसे हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये कोई दूसरा बुखार है या फिर ये लू ही है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं?
5: अगर मरीज में ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं कि मरीज को तेज बुखार है या फिर वो बेहोशी की हालत में हो रहा है, उसे बार बार उल्टियां हो आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है या चक्कर आ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि उसे लू लगा हुआ है। और जैसे फीवर तो अलग अलग टाइप का होता है, तो वो तो फिर ब्लड टेस्ट करेंगे तब उस पर हम समझ सकते हैं कि ये टाइफाइड का फीवर है या मलेरिया है या डेंगू है, जिस तरह का भी है। लेकिन आजकल गर्मी का जो सीजन है उसमें ये खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो बहुत हद तक ये लू की संभावना हो सकती है, तो इसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और बहुत हद तक अगर इसमें IV फ्लूइड लगाया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए मरीज को, या कोई इमरजेंसी उपचार की जरूरत है तो वो डॉक्टर फिर डिसाइड करते हैं। गर्भवती महिलाओं में मैं अलग से ये बात बोलना चाहूंगी कि उनमें ये देखा जा सकता है कि महिलाएं अगर कंप्लेन करें कि उन्हें पेट में दर्द हो रहा है या फिर चक्कर आ रहा है बार बार, या फिर बच्चे का जो चलने का जो मूवमेंट

0: होता है वो अगर वो महसूस थोड़ा उनको लगता है कि बच्चा कम घूम रहा है पेट में, तो उनको थोड़ा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए।
1: प्राथमिक उपचार में अगर मरीज को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि लोग लू लगने से प्राथमिक उपचार को ज्यादा तरजीह देते हैं, उसके अगर आराम नहीं मिलता है तो मरीज को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय है?
0: हाँ, अगर उसको प्राथमिक उपचार से अपने ही जैसे घर में इलाज कर रहे हैं और अगर उनको उनको उसमें कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है, तो वो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर ही फिर डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का है या कितनी गंभीर अवस्था में वो मरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर डिसीजन लेते हैं कि अगर शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, मरीज को अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।
1: जी, और लू कितने हद तक खतरनाक हो सकता है कि लोग इसे कभी कभी मामूली भी समझ लेते हैं और इसका घरेलू इलाज करते हैं, तो आप ये समझाएं कि ये कितना हद तक के खतरनाक हो सकता है?
0: हाँ, ये अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो ये आगे जाके बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मरीज को बार बार बेहोशी की हालत में मरीज चला जाता है, या फिर उसे डिहाइड्रेशन बार बार होता है, या उसका जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जैसे कि उसकी किडनी पे असर पड़ता है, लीवर पे असर पड़ता है, मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, इवन कोमा में भी जा सकता है और शरीर का तापमान बहुत बढ़ सकता है, यहाँ तक कि उसके जान जाने का भी खतरा होता है।
1: जी मैम, और मैम चलते चलते आप हमारी सभी बहनों को, हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगी?
0: मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अगर बहुत जरूरी कोई काम अगर उनका ना हो तो दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक वो ना निकले, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, पर्याप्त पानी जरूर लें क्योंकि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, साथ में ओआरएस का घोल हो गया, जैसे कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कपड़े हल्के, मतलब हल्के कपड़े जो सूती के कपड़े होते हैं वो खासकर पहने, और खाली पेट में बाहर ना जाए, और जब भी बहुत तेज धूप में निकले तो अपने सिर को ढककर निकले और ज्यादा देर तक किसी बंद जगह पे या गर्म जगह पे ना रहे, अपने आप का हाइड्रेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन करें।
1: जी बहनों, अभी हम जानकारी दे रहे थे कि लू कितना खतरनाक हो सकता है, घरेलू उपचार के अलावा आप अस्पताल भी ले जाने की कोशिश करें। बहुत सारी जानकारी दे रही थी आज की हमारी मेहमान, थी डॉक्टर अर्चना पाठक मैम। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें, बहनों आप इसी विषय पर भेंट वार्ता सुन रही थी। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर अर्चना पाठक और उनसे बातचीत कर रही थी मैं जबीन।
3: और सुभाषनी, हम अपने कार्यक्रम में अपनी बहनों को ये जानकारी दें कि नशा मुक्त भारत हम किस तरह से इस अभियान से जुड़ सकते हैं और नशा को हम अपने देश से किस तरह से खत्म कर सकते हैं। नशा हमारे आधुनिक समाज को अंदर से खोखला करने वाली एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बुराई है। ये ऐसी बुराई है ना कि अगर इससे नहीं दूरी बनाई जाए तो ये अंदर अंदर खोखला कर देता है, यानी न केवल किसी एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में युवाओं के बीच बढ़ती नशीली पदार्थों की लत को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को देशव्यापी और नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवाओं समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और भारत को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है। शुरुआत में यह अभियान भारत के और 272 हाँ, जैसे कि हमने
2: जो ज्यादा सबसे संवेदनशील जिलों
3: में है शुरू किया गया था, जिसका विस्तार अब देश के सभी जिलों में कर दिया गया है। सरकार इसके माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहती है जहां युवा स्वयं मादक पदार्थों से दूरी बनाने का संकल्प लें।
2: बिल्कुल सही कह रही हो। नशा मुक्त भारत अभियान

0: केवल एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं है बहनों, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के स्वास्थ्य और उनकी सोच पर निर्भर करता है। यदि हमें भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपने समाज को हर प्रकार के नशे से मुक्त करना ही होगा बहनों।
1: अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो नशा मुक्त मित्र या स्वयं सेवक के रूप में इस अभियान से जुड़कर समाज को जागरूक कर सकते हैं, या फिर नशा मुक्त भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नशा मुक्ति की शपथ भी ले सकते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म पर जाकर अभियान से जुड़ी गतिविधियों और इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित नशे की समस्या से जूझ रहा है, उपचार परामर्श चाहता है, तो आप राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर आपको निकटतम पुनर्वास केंद्रों की से जो मदद है वो दिला सकती है। यानी कि अगर हम कहें तो सरकार इस ओर पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हमारे देश को नशा मुक्त किया जा सके।
0: तो बहनों, इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहने का संकल्प लेना होगा। और हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि नशे की लत है एक अभिशाप, यह मिटा देती है सुख और साख। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, भारत को हम नशा मुक्त बनाएं।
1: बहनों, अब हम आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और अब हम आपको लिए चलते हैं रसोई की ओर। आज हम आपको बताएंगे आम पन्ना, और इसके लिए जो सामग्री चाहिए हम आपको ये बता ही देते हैं कि उसको आप ले लें। आम पन्ना गर्मियों का एक पारंपरिक और बेहद स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जो शरीर को तुरंत ठंडक प्रदान करता है और लू से भी बचाता है। कच्चे आम से बनने वाला यह शरबत न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि भीषण गर्मी में शरीर के तापमान को संतुलित रखने में एक अचूक प्राकृतिक उपाय भी है। इसे आप आसानी से घर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकती हैं और इंजॉय कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनों, आम पन्ना जो है वो गर्मी के लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि हमारी सखी ने बताया। तो आप झटपट कॉपी और कलम निकाल लें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं आवश्यक सामग्री क्या इसके लिए चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कच्चे आम तो चाहिए आपको। कच्चे आम चाहिए 2-3 मध्यम आकार के, और स्वाद के लिए पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं। 1 कप फ्रेश पुदीना के पत्ते, फिर स्वाद के अनुसार गुड़ या चीनी, अगर चीनी आप नहीं खाती हैं तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। भुना जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच और काला नमक 1 छोटी चम्मच और ठंडा पानी ले लें।
0: बनाने की विधि, कच्चे आमों को धोकर कुकर में 2 कप पानी के साथ 1-2 सीटी आने तक उबाल लें। आम ठंडे होने पर उनका छिलका निकाल कर गूदा को एक कटोरी में निकाल लें। मिक्सी के जार में आम का पल्प, पुदीने की पत्तियां और चीनी या गुड़ और डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब इसे गाढ़े पेस्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक मिलाएं। 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच यह तैयार पेस्ट डालें। ऊपर से ठंडा पानी मिलाकर अच्छी तरह से धो लें। आपका फ्रेश आम पन्ना तैयार है।
1: बिल्कुल। और आप आराम से इसे पी सकती हैं, और अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आते हैं तो आप इसे पिला भी सकती हैं, क्योंकि आम पन्ना जो होता है वो गर्मी के लिए एक कहें तो अमृत के समान होता है। इसी तरह से बहुत से हमारे मौसमी फल भी हैं, जैसे तरबूज हो गया जिसमें बहुत सारा पानी भी होता है, और खरबूजा हो गया, खीरा हो गया। तो ये सब आप ज़रूर लें, लू से बचने में ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसका सेवन करें। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फल का सेवन करने के लिए दें। अगर और ये ध्यान रखें लेकिन कि जो छोटे बच्चे हैं और घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें फल का सेवन शाम के समय में ना करने दें।
0: तो बहनों, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब हमें इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की, और अब महजबी
1: और सुभाषिनी को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म बागे के इस गीत से। आवाजें अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है। शब्द रचना समीर के, संगीत पर किया आनंद मिलिंद ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: आइए सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना. आवाज़ें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है. शब्द रचना जतिन ललित के. संगीत पटकिया माफ कीजिएगा, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के. संगीत पटकिया जतिन ललित ने.

आइए सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ये गाना। आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है। इस गीत को लिखा विजय अकेला ने, इब्राहिम अश्क

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना लोगों के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला।

0: लोकतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक कहा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंत्योदय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: देश के अंदर उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके दिल्ली तक, और सरकार भी चाहता भी था, और यहाँ और नए माइंस का भी सर्वे करके गया है। प्रयास किया है करके उसको विश्व है।
0: इधर हजारीबाग में सेवानिवृत्त सैन्य जवानों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय सेना का मनोबल और मान सम्मान काफी बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बेहद गर्व की बात बताया।
2: 12 साल मोदी जी का सेना के लिए तो बहुत लाभदायक है, और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 2014 के बाद सेना में बदलाव भी हुआ और हर फौजी का आत्मविश्वास बढ़ा।
3: काम तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है डिफेंस में। आने वाले समय से बदलाव जिस तरह चाहिए उस तरह हो रहा है, और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ सेना के लिए अच्छा विकास हुआ है। इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और जितने गन डिफेंस सर्विसेज में चाहिए थे वो मिल रहे हैं।
0: इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए

0: एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।
1: एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% सेफ, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है क्वारी करने का, बताने का, आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नीचे आपने, यहाँ 5 क्वारी है, भाजपा का समित पद कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे।
0: दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नियमों के प्रतिकूल बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
2: भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए।
0: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोराबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444 बालू घाट बंद रहेंगे और बालू के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित पीर टांड प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत बंजर जमीन पर आम बागवानी कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। योजना से लाभान्वित किसान शेखर महतो और तूप लाल बेसरा ने बताया कि सरकार की मदद से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: बंजर भूमि था जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो में उम्मीद से बढ़िया हुआ है। पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
4: हम भगवान मिला नरेगा तब से, तब हमने लगाए हैं। पूरे प्रखंड का सब आ करके देख रहा है, पूरा प्रखंड में लगा रहा है। इन साल कुछ मौसम के चलते से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए।
0: पंचायत सचिव सरफराज अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, तभी मालीपाड़ा ढलान के निकट यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 597 अंक चढ़कर 74,516 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 157 अंक बढ़कर 23,400 पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए मॉनसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जापान में आयोजित अंडर-18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की दो बेटियों का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम की सदस्य संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।
5: मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था जिसमें हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शूट आउट में लूज हो गए। कोशिश किए थे कि फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल मारने का, पर नहीं हो पाया। और थर्ड प्लेस के लिए खेले कोरिया के साथ। हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर-18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं अनीता सेन।

अभी आप डॉक्टर अनीता सेन से टप्पा और कजरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं चंद गजलें।

इसी के साथ सुगम संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, ये सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ के देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारे युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और

0: की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
1: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
3: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
3: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में

0: कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद करेंगे। वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए।

0: और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म गीत से ये गाना. आवाजें महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की है. शब्दों में पिरोया हसरा जयपुरी ने. संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी.

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंखें से ये गाना। इस गीत को लिखा साहिल उद्यानवी ने, धुन बनाई है रवि।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म क्रांति से। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की है। शब्दों में पिरोया है संतोष आनंद ने, संगीत बदके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दुश्मन है खुदगर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का।
1: फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी नगवा सुनते हैं फिल्म उपकार से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा, संगीत पाठ किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने

0: 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों का श्री मोदी के नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सम्मान प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और तालियां बजाकर देश सेवा की इस अभूतपूर्व यात्रा की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षों से देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय उठता था, नक्सलवाद। आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। परिमल नाथवाणी के राज्यसभा नामांकन पर संशय बरकरार है। इंडी गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन जांच के बाद कल जहां वैध पाया गया, वहीं श्री नाथवाणी के नामांकन पर आपत्तियों की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने परिमल नाथवाणी प्रकरण पर आज विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी विधानसभा के पास पहुंचे और तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया है, वह अमर्यादित तथा नियमों के विरुद्ध है, जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया बाधित करना चाहती है।
2: कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं, आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कानून बाधा डालने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे लोग जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है, तुरंत एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी
0: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोरहाबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। इस दौरान आंदोलनकारी ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
0: फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है।

0: है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू।

तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?

0: झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता,
0: ये लो, ये पकड़ो पकड़ो। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
0: अच्छा,
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
0: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
0: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ, चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी,
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह,

ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
0: ओ,
1: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
1: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
3: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
1: जी
3: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
3: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
3: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
3: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
3: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
3: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
3: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा।
3: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
3: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
3: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ,

0: और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं। हाँ।
1: Hey!

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीही के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
2: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है, आइए सुनते हैं केंद्र की

0: एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है महिला सशक्तिकरण। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर नेहा तिवारी, प्राध्यापक पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम करकट्टा।
1: नमस्कार, मैं पूनम करकेटा आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत परिचर्चा में। परिचर्चा का विषय है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर विशेष परिचर्चा। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नेहा तिवारी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। डॉक्टर तिवारी और श्री कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: जोहार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं, और इस दौरान सरकार ने कई विकास कार्यों को बड़ी प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। और इन कार्यों में एक बात बहुत अच्छी है कि महिलाओं के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, कई योजनाएं लाई गई हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक नारी अगर शिक्षित हो, सशक्त हो, तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित और सशक्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की। अमरेंद्र कुमार जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि यह जो योजना है ये वैसी महिलाओं के लिए है जो अपने गर्भावस्था के दिनों में अपने बच्चों के लिए अगर उनको 5000 रुपए की 3 किस्त दी जाए तो उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। इस योजना का हमारी माताओं पर और खासकर पूरे समाज और देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी टिप्पणी।
3: अभी तो जो परिणाम आए हैं पिछले 12 वर्षों में उसमें तो बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खास के गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु को लेकर के। इसका ये असर पड़ा है कि जो MMR है, मातृ मृत्यु दर, उस पर सार्थक असर पड़ा है। पहले प्रति 1,130 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी जन्म के समय में, जिस दौरान वो घट करके 87-88 पर अभी एवरेज चल रहा है। तो ये संस्थागत प्रसव के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है, और इस दिशा में काम होने से आगे और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
1: जी डॉक्टर तिवारी, आप इस योजना को आप कैसे देखती हैं?
2: मैं समझती हूँ कि किसी भी राष्ट्र में एक माँ का स्वस्थ रहना, क्योंकि माँ का स्वस्थ रहना इसलिए महज ज़रूरी नहीं है कि वो एक महिला है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, पर हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में जो नौनिहाल आएंगे, जो बाद में जाके युवा बनेंगे, जिनके कंधों पर भारत को एक विश्व में नया आयाम दिलाने का कर्णभार होगा, जिम्मेदारी होगी, अगर माएँ कमज़ोर होंगी तो बच्चे यकीनन कमजोर होंगे। और कई बार हमने देखा है कि ये मातृत्व में जो मृत्यु दर देखी जाती है, तो केवल माएं इस दुनिया से नहीं जाती बल्कि वो या तो कमजोर बच्चे छोड़कर जाती हैं या उन बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे लिए वो हर तरह से हानिकारक था, और इस पे जिस प्रकार से पिछले एक दशक में विशेष रूप से काम हुआ है और जो उपलब्धि हासिल हुई है, जिसका जिक्र अभी मेरे साथी अमरेंद्र जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन आया तो स्वच्छता, और उसके बाद लगभग 12 करोड़ जो है वो शौचालय का निर्माण हुआ, तो ये भी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है।
1: बिल्कुल।
2: और महिलाओं को आप जानती हैं कि महावारी के समय में स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो हम केवल ये जो मातृत्व योजना है उसको एकीकृत करके देखने की जरूरत है, इन सारी योजनाओं को, जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में उसमें काफी इजाफा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: जी जी, इसी तरह की योजना है जननी सुरक्षा योजना।
2: जी,
1: और इसमें भी महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया जा रहा है BPL महिलाओं के लिए, तो ये उनके लिए भी बड़ी का उत्साहवर्धक योजना है, क्योंकि इस दौरान जो काम करने वाली महिलाएं हैं, खास करके मजदूरी या घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनका जो लॉस होता था, मजदूरी का लॉस होता था, वो भरपाई होती है, ये बड़ी अच्छी बात है।
2: जी, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है कि कई बार जो है उस मातृत्व को बोझ की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसके साथ

0: बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, तो उनको जिस भी प्रकार की आर्थिक मदद मिल पा रही है वो मुझे लगता है कि उनको एक अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने में, बेहतर खान पान करने में और स्वस्थ रहने में जो है वो मददगार साबित हो सकती है। इस वजह से इस योजना को मुझे लगता है कि जितना ग्रामीण महिलाओं तक और उन कमजोर तबके की महिलाओं तक जो खासतौर पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रही हैं और गर्भावस्था में जैसा आपने कहा कि वो काम पर नहीं जा पाती और नुकसान होता है, तो उसमें कैश की व्यवस्था करके सरकार ने खासी मदद की है उनकी। मैं तो समझती हूँ कि इस रकम को और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे हमारी माएँ स्वस्थ रहें और आने वाले समय में फिर बच्चे स्वस्थ रहें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण देश के लिए हो सके।
1: जी, बच्चियों के लिए भी उनके सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य के लिए योजना शुरू की गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, उनके सतत विकास के लिए। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी अमरेंद्र जी।
2: ये सुकन्या योजना का प्रारंभिक लाभ बच्चे के जन्म लेने के साथ जब उसका उत्थान होने लगता है उसी समय ये सरकार ये योजना चला दी है, जिससे ये छोटी बच्चियां जो हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में बड़ा दायित्व निभाएगी उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए सुकन्या योजना के तहत जो बचत होती है, जो पैसा जमा होता है उसके लिए जो लाभ दिया जाता है वो प्रोत्साहन की एक अच्छी पहल है और इसे राशि और बढ़ाया जाना चाहिए, उनके फायदे के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें जो जो योजनाएं चल रही है, हमारे सुकन्या योजना को बैंक भी अडॉप्ट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस से भी चल रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, तो इसको और व्यापक करने की जरूरत है। लेकिन अब तक जो परिणाम आ रहे हैं वो भी सार्थक है और इसमें हमारी जन सहभागिता बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। पहले जागरूकता नहीं थी, लोग सोचते नहीं थे, एक बेटा और बेटी का जो नजरिया था देखने का उसमें बहुत बदलाव हुआ है और इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभिक दौर की ये अच्छी योजना है, इसका मैं सराहना करता हूं।
1: जी, डॉक्टर तिवारी, क्या आपको लगता है कि ये जो योजना है बच्चियों के लिए, इससे कई कुरीतियों को हमें दूर करने में मुक्ति मिलेगी? क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि बेटियों की शादी से लेकर जो लोगों के मन में रहता था कि बहुत पैसा खर्च होगा और जो दहेज की कुरीतियां थी, क्या इनसे हम मुक्ति पा सकेंगे?
0: देखिए, दहेज की कुरीति से हम आजाद हो पाएंगे कि नहीं ये एक अलग सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए हमें बहुत सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर बदलाव की जरूरत है। लेकिन एक बात जो आपने कही उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं हैं जहां पर हम बच्चियों के लिए खास इंटरेस्ट में एक बचत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो यकीनन हुई है कि अब बेटियों के जन्म को बोझ की तरह नहीं देखा जा रहा है और माता पिता अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ सही समय पर अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं तो बच्ची को चाहे पढ़ाना हो चाहे विवाह की जिम्मेदारी हो, अब वो उनको थोड़ी आसान लगने लगी है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा काम हुआ है मुझे लगता है और इसका लाभ भी हम देख रहे हैं। और अगर बच्चियों के एजुकेशन में, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हमने देखा है विश्व स्तर पर भी कई जगह पर है, पर भारत में या विकासशील देश हैं आप कह सकते हैं, तो उस वजह से ग्रामीण परिवारों में बेटा बेटी के बीच भेदभाव और अगर पढ़ाना है तो वो चुनाव करते हैं बेटे का, तो कम से कम इस तरह की योजना से बच्चियों की पढ़ाई के लिए उनको अगर या वो अपना कुछ नया काम करना चाहें तो उसके लिए जो एक राशि मुहैया हो रही है एक खास उम्र में आने के बाद, वो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत काम आएगी और इस योजना के और बेहतर परिणाम जो है वो हम आने वाले समय में देखेंगे
1: देख सकेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्ची पढ़ लिख लेती है, इस योजना से उसको अगर मदद मिलती है, पढ़ी लिखी बच्ची अपना कैरियर बना सकेगी आगे जाके, और अगर अपना कैरियर बनाती है तो उसे दहेज जैसी कुरीति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: और मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ कि इस तरह के सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे आने वाले समय में।
1: जी, डॉक्टर तिवारी, एक और योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें जो महिला उद्यम के क्षेत्र में आना चाहती हैं उनको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जो लोन दे जाने की योजना है,
0: जी जी,
1: उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
0: जी, मुझे लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे बेहतर प्रयास कभी नहीं हुए और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो योजना विभाग है जिसने इस पर काम किया, हमारा जो वित्त विभाग है और विशेष रूप से जो है वो प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए। हमेशा से ही इस सरकार का जोर रहा कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, उनके पास जो भी हुनर हो उसका एक किस्म से व्यवसायीकरण हो सके, वो कुछ काम करके कमा सके। उस आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करना बहुत जरूरी था और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है या शिक्षा किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से नहीं है मगर आप

0: वो आगे आई हैं। इसका फलाफल ये हो रहा है कि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्यम अपने लिए करने में उनको बहुत मदद मिली है। स्वयं सहायता समूह का भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है हाल के दिनों में। पहले छोटे मोटे कहीं गांव में सुनते थे या कहीं के कहते, लेकिन अभी धड़ल्ले से SSG की नाम आप सुनेंगे, चर्चा करेंगे,
1: जैसे
0: लखपति दीदी योजना चले, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, 10 करोड़ से अधिक महिलाएं SSG नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। ये बड़ी बात है जो पिछले हम लोग 50 वर्षों का जो दौर देखेंगे विकास का, खास करके महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, तो ये जो 10 साल 12 साल है इसमें ये बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं SSG से जुड़ने बड़ी बात है। पिछले अगर 40 वर्ष को अब देखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में और प्रगति होगी, इसकी अपेक्षा हम रख रहे हैं। जिस हिसाब से बौद्धिक विकास के साथ साथ समाज के विभिन्न स्तरों पर महिला सशक्तिकरण को लोग स्वीकार कर रहे हैं और प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने घर परिवार में भी आप देखिएगा तो 20 साल पहले जो सोच था, खास करके काम करने वाली महिला अगर किसी घर में आती थी उनके प्रति, और आज के दिनों में व्यवहार में अंतर है। तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इसमें बहुत सी योजनाएं शामिल है, जैसे झारखंड में योजना चल रही है जिसको लोग चुनाव के समय मैंने लॉन्च किया, लेकिन अभी वो योजना जो है अच्छी उपलब्धि है। उससे क्या है कि आत्मनिर्भरता के लोग बढ़ रहे हैं, अपने अपने रोजगार पर हैं और घर के भीतर भी उनको सम्मान मिला है। मैया योजना को अगर देखेंगी तो एक मान सोशल चेंज के लिए एक बड़ा उदाहरण हो सकता है अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो।
1: जी, अपनी बात में आपने मेंशन किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप।
0: जी जी,
1: सुनने में ये बहुत मजबूत नहीं लगता लेकिन इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक मजबूती का स्तंभ है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
0: सबसे तो पहले ये कॉपरेशन है
1: जी,
0: 4 महिलाएं या 10 पुरुष कहीं भी कोई बैठते हैं तो आपस में कोई निर्णय करते हैं, चर्चा होती है, तो वो बेहतर परिणाम आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये मतलब होता है कि अपने ढंग से हम किसी चीज को आगे कैसे बढ़ाएं, एक दूसरे को मदद लें और सहभागिता के तौर पर, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, और हम लोग मिल करके ये सामूहिक जवाबदेही है, सामूहिक उत्थान के लिए हम आगे करें। तो ये भावना उससे स्वयं सहायता समूह के बीच में जुड़ती है और इसका बहुत परिणाम आ रहा है। कोई भी स्टार्टअप का प्रोग्राम होता है, अगर 10 महिला दीदी योजनाएं देख लीजिए यहाँ, जहां जहां बहुत से प्लस योजनाएं चल रही है, झारखंड सरकार की, झारखंड सरकार भी ग्रामीण विकास से योजना को शुरू की है। तो ये स्वयं सहायता समूह है, एक कंसेप्ट है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है, लेकिन इसमें महिलाएं ने जिस ढंग से इसको एडॉप्ट किया और जिस उत्साह से आगे बढ़ी, सरकार ने सहयोग किया, बहुत सी योजना उसको ध्यान में रखा, तो वो आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा रोल अदा करेगा। और
1: इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि कई बार महिलाओं में हिचक होती है, स्पेशली वो जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अगर उन्होंने बहुत पारंपरिक जो शिक्षा है वो नहीं ली है तो कई बार उनके अंदर एक हिचक होती है कि वो अकेले किस प्रकार से कर पाएंगी और क्या उनकी सहायता के लिए कोई आ पाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो स्वयं सहायता समूह है इनकी भूमिका आ जाती है कि जहाँ पर कई महिलाएं इकट्ठी हैं, एक दूसरे से सहारा ले रही हैं, एक दूसरे से चीजें सीख रही हैं और एक आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए वो एक आंदोलन की तरह पूरे देश में एक दशक के रूप में हम देख सकते हैं और इसने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया है। अगर आज भी हम पंचायत के लेवल पर जाएं तो देखेंगे कि महिलाओं को बहुत सहारा इससे मिला है।
2: जी, कई बार मुझे गांव जाने का मौका मिला है और ये देखने का मौका मिला है कि SSG की महिलाएं किस तरीके से मीटिंग करती हैं
1: जी,
2: और वो देखकर इतना अपने आप में भी इतना अच्छा लगता है
1: जी।
2: उनकी बातें जब वो मीटिंग करती हैं, पुरुष भी होते हैं लेकिन जिस तरीके से वो लीड लेती हैं मुद्दों पर,
1: बिल्कुल
2: वो काबिले तारीफ है।
1: और देखिए, निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं से काफी सालों तक जो है वो उनको वंचित ही रखा गया है, तो ये समूह जिस प्रकार से उनको ये अधिकार दे रहे हैं और जैसा आपने कहा कि वो नेतृत्व कर पा रही हैं, वो एक दूसरे से अपने निर्णय साझा कर पा रही हैं, काम करवा पा रही हैं ना पंचायत के स्तर पर और सारी चीजों पर, तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: जी जी जी, अमरेंद्र जी,
0: अभी आप SSG की जो चर्चा की, इस संदर्भ में मुझे लगता है एक बात और मुझे कहनी चाहिए
2: जी।
0: पहले के जमाने में, आज 25 साल 30 साल पहले, महिलाओं का जो एक जगह जुटना होता था, मोटे तौर पर जो सम्राट परिवार के लोग होते थे वो किट्टी पार्टी की तरह से शुरुआत होती थी, वो चलता रहा। आज की डेट में मेरा ये मानना है कि जो SSG जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, महिलाओं ने जितना परचम लहराया है, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसमें भी सीख लेनी चाहिए। जो किट्टी पार्टी कर रहे हैं केवल इंटरटेनमेंट के लिए, पैसा कलेक्शन के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं इन लोग से सीख करके, तो एक भी बड़ा हो सकता है और एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उनका भी महत्वपूर्ण

0: योगदान हो सकता है
1: बिल्कुल,
0: उसमें।
1: बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि वो उसको एक सोशल कॉज पे भी लेके जा
2: बिल्कुल
1: सकती हैं
2: बिल्कुल। और
1: कि
2: कई
1: जो
2: कई
1: इकट्ठा
2: किटी
1: कर रही
2: पार्टीज
1: हैं।
2: में मैंने देखा है कि वो एटलीस्ट मतलब कुछ फाइनेंशियल ना भी कर रही हो तो सोशल वर्क तो जरूर करने
0: बिल्कुल
2: लगती हैं
0: बिल्कुल
2: इकट्ठी
0: बिल्कुल
2: होकर,
0: बिल्कुल
2: तो ये
0: बिल्कुल।
2: अच्छी बात है। मुझे लगता है पूनम जी हमें उज्ज्वला योजना की भी चर्चा करनी
1: जी,
2: चाहिए
1: जी,
2: क्योंकि
1: जी मैं एक बात
2: जी
1: बस ऐड करना चाह रही
2: जरूर।
1: थी। झारखंड में पालकोट के साइड में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका नाम है जोहार रागी। रागी को उन्होंने इतने बड़े स्तर पर अभी शुरू किया है, उनकी पैकेजिंग देखिए, उनके फूड का क्वालिटी देखिए, उनका प्रेजेंटेशन देखिए, वो कहीं से भी आपको इंटरनेशनल लेवल से कम का नहीं है
2: जी जी
1: और मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं उसकी। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे अमरेंद्र जी?
0: देखिए, जोहार रागी की तो चर्चा होनी ही चाहिए, बहुत अच्छा की आपने टॉपिक में इसको शामिल किया। जोहार रागी को भी हाल के दिनों में मुझे बहुत नजदीक से देखने का
1: अच्छा,
0: मौका मिला, मैं प्रभावित हुआ। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली और देहरादून, तो कई बड़े लोगों से मिलना भी होता है, तो अपने हम लोग यहाँ परंपरा है कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो इस बार मैंने जोहार रागी का पैकेट
1: बढ़िया
0: मरुआ का लड्डू से लेके नमकीन आइटम थे, चार आइटम था, तो अब मैंने जिन लोगों को दिया वो आइटम की प्रशंसा की, झारखंड का नाम उनके मानस पटल पर रहेगा। और कोई ऐसे लोग थे जो कभी झारखंड नहीं आए थे, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो जब उन इस पर मैंने चर्चा की, मैंने तो उनको ऑफर किया कि मैं लाया हूं, इसको स्वीकार किया जाए, लेकिन जिन्होंने भी खाया उसका पैकेजिंग से लेकर के क्वालिटी लेकर वो प्रभावित हुआ। और इस बहाने एक झारखंड का भी ब्रांडिंग हुआ, उनका जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चला कर जो प्रोडक्ट कर जोहार रागी उनका तो ब्रांडिंग हुआ ही, लेकिन इस बहाने झारखंड का भी हुआ और मिलेट प्रोडक्ट जो है उसको लेके हुआ, तो ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी, इसलिए मैं उससे प्रभावित हुआ।
2: देखिए, खेती में हमेशा से महिलाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अब ये है कि वो उसे उसकी मार्केटिंग करके और आत्मनिर्भर हो रही है, ये अब बड़ी बात
1: बिल्कुल,
2: हो गई है।
1: और वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल, क्वालिटी में होता, बिल्कुल
1: कोई दो राय नहीं है। जैसे आप मेंशन कर रही थी डॉक्टर तिवारी, उज्ज्वला योजना की,
2: जी जी,
1: उज्ज्वला योजना जो महिलाओं के लिए एक देन है, उस पर आपकी टिप्पणी।
2: जी, मैं इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि हमारे भी कई विद्यार्थी हैं या युवाओं से मैं मिलती हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में से आते हैं, तो महिलाओं का खासा समय जो है वो लकड़ी चुनने में और फिर चूल्हे पे खाना बनाने में निकल जाता था, तो उस वजह से मैंने ये महसूस किया कि उज्ज्वला योजना के आने के बाद जब उनके पास गैस की सुविधा आ गई है तो न केवल समय बच रहा है बल्कि बचे हुए समय का वो एक सकारात्मक उपयोग, एक रचनात्मक कर पा रही हैं।
1: जी जी, और इस योजना का महिला स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल सकारात्मक असर पड़ा है,
2: बिल्कुल
0: बहुत
2: बिल्कुल
0: अच्छा।
1: जो धुआं गर्मी और इनसे उनको राहत,
0: समय भी ज्यादा लगता था।
1: जी जी, जी जी जी, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है खाना बनाने में
2: बिल्कुल
1: वो जाया होती थी,
2: जी
1: अब खाना भी बना रही हैं।
2: हाँ।
1: और दूसरे
2: बल्कि मुझे लगता है वैरायटी ऑफ खाना भी बना सकती
0: हाँ।
2: क्योंकि समय ज्यादा है और क्विकली वो है बन जाएगा वो।
1: जी जी, महिलाओं के सहायता के लिए एक और काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की गई देश भर में, वन स्टॉप सेंटर। इसमें उनको मेडिकल सहायता से लेकर लीगल सहायता, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टेम्पररी शेल्टर भी दी जाती है। महिलाओं के लिए जो इस तरह की एक शुरुआत की गई वन स्टॉप सेंटर की, उसका कैसा सकारात्मक असर होगा अमरेंद्र जी?
0: देखिए, वन स्टॉप सेंटर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि आप एक जगह पहुंचिए, आपको तमाम तरह की आवश्यक जो जानकारी चाहिए, सुविधा चाहिए, वो मिलेगी
1: जी।
0: तो अब दर दर भटकना नहीं पड़ता है, अगर तीन सूचना चाहिए तो तीन जगह जाने के बजाय आप एक सेंटर पर, जैसे इंडस्ट्री के लिए एक कंसेप्ट आया था सिंगल विंडो सिस्टम, एक खिड़की पर जाइए, एक ऑफिस में जाइए, तमाम चीज आपको मिल जाएंगी, तो ये उसी तरह की योजना है और कंसेप्ट लगता है वहीं से मिलती जुलती। तो इसमें है कि एक महिला, पहले समय का अभाव रहता है, झिझक होता है, अब जो महिलाएं दहलीज पर से आगे बढ़ रही हैं वो एक जगह अगर जाती हैं तो उनको तीन सुविधाएं मिल जाएंगी, चार सुविधाएं, जो वन स्टॉप सेंटर का क्राइटेरिया है या जो जो अवेलेबल है सुविधाएं, तो एक ही जगह जाने से सुविधा मिलती है, हिचक टूटती है और उत्साहित होती है कि लगता है कि जाएंगे तो एक ही दिन जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे तो तमाम मेरे समस्या का निराकरण हो जाएगा, जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, तो ये बेहतर परिणाम आने वाला है। झारखंड सरकार भी हाल के दिनों में शुरू की है कुछ जिलों में और आगे बढ़ाने की भी योजना है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए।
2: पूनम जी, इसमें एक चीज जरूर है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत है, डोमेस्टिक वायलेंस का उनको सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जो महिलाएं अकेली रह जाती हैं, जो घर से बाहर निकाल दी जाती हैं किन्हीं वजहों से, समाज उनके साथ बहुत न्याय नहीं कर पाता, ऐसे में ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो उनके लिए बहुत ही संरक्षण का काम करेंगे और कर रहे हैं, और इसको तो मैं समझती हूँ कि और बेहतर बनाने की जरूरत है। एक उनके लिए करियर काउंसलिंग, और जैसा आपने कहा कि लीगल काउंसलिंग तो होती है, लेकिन उनको करियर भी एक देने का कुछ काम वहाँ पर हो सके, और लंबे समय तक जो है वो रहने की व्यवस्था ना करके बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाकर और फिर समाज में वापस अपने पैरों पर खड़े होने की अगर तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार ने इस दिशा में काम किया है यकीनन, लेकिन और बेहतर काम की गुंजाइश है।
1: जी जी, और सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है 181, ये 2400 घंटे सातों दिन है, जिसमें जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं वो अपने रेस्क्यू के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पुलिस के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इससे महिलाओं में एक अलग तरह का साहस जगा है, यहाँ उनको असिस्टेंस मिलती है कि हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाएगा, पुलिस उनके पास आएगी, रेस्क्यू वैन्स उनके पास आ जाएंगे, ये भी उसी का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार ने कुछ ऐसे भी कदम उठाए हैं जैसे सेना में महिलाओं की मौजूदगी हमें दिखती है, और उससे जो बाकी महिलाएं हैं वो उनका जो एक नजरिया बनता है, एक जो वैचारिक लक्ष्य उनका जो तय होता है उस पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। आपकी टिप्पणी चाहूंगी
2: पूनम जी। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं तो सेना में आने लगी थी, मगर बहुत सारी चीजें जो है वो प्रतीकात्मक होती हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में इसका बहुत महत्व होता है। जब आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर डिफरेंट लेयर्स के, डिफरेंट स्तर के लोग हैं, जहाँ चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हो, तो उस समय ऐसे प्रतीकों का या ऐसे प्रतिनिधित्व का जो कि अपने अपने जेंडर का वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारी दो सेना की महिला अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। अब चुनाव उनका महिला होने के नाते नहीं किया गया, लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से महिलाओं के,
1: युवा महिलाओं पर
2: और एक जो एस्पिरेशन जागती है कि हम भी वहां हो सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में उनकी एक विशेष टुकड़ी है और एक महिला जो है वो सबका नेतृत्व कर रही है। तो ऐसे कुछ जो चुनाव किए जाते हैं, मैं समझती हूँ कि उससे बहुत असर पड़ता है। हमारी बहुत सारी वाइस चांसलर अभी महिला हो रही हैं। हाल ही में जो खबर आई, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इस समय 4 राज्यों की महिला हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ये पता चलता है कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाएं आगे आए, अपने गुणों पर और अपनी काबिलियत पर आए, लेकिन उनको आने में जेंडर जो है वो किसी प्रकार की रुकावट ना बने। और हम इस समय झारखंड में बैठे हैं, और अगर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात ना करूं तो ये ठीक नहीं होगा। वो तो वो खुद अपने आप में जिस प्रकार से एक स्थानीय स्तर पर संघर्ष करके जिस मकाम पर पहुंची हैं, वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ भारत का, भारत की सरकार का, भारत की महिलाओं का, भारत के समस्त लोगों का जो विचार है महिलाओं के उत्थान के प्रति, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। जी
0: अमृता, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चल रही है, जो कंसेप्ट है, अभी जो घर घर चर्चा हो रही है, समाज में चर्चा हो रही है, डिबेट का विषय तो अभी एक अवसर पर आ गया, लेकिन इसमें जो एम्पावरमेंट के लिए जो काम हो रहा है, अगर इसको कहें एक लाइन में कि महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, विभिन्न योजनाओं को लेकर के वो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता बन रही है, जिसका उदाहरण इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई लोगों की चर्चा की। अभी सेना में महिला की बात हो रही थी, हमारी लड़कियां जा रही हैं। आज के डेट में देखेंगे कि आप स्टेट पुलिस में टॉप अप की जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आपको धरेल्ले से महिलाएं मिलेंगी, बच्चियां मिलेंगी, और वो बहुत उत्साह के साथ आगे करेंगी। अब ये समाज का जो सकारात्मक दृष्टिकोण बदुआ है पहले की तुलना में, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसका सार्थक परिणाम सामने आ रहा है।
1: जी जी जी, हायर एजुकेशन में महिलाएं आगे आई हैं और उनका जो नामांकन बढ़ा है 61 लाख से भी अधिक हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर महिला शिक्षित होती है तो वो अकेले नहीं होती, उनके साथ पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक नई सोच मिलती है, देश को एक दृष्टिकोण मिलता है। तो हायर एजुकेशन में लड़कियों का आना स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि सरकार की कई योजनाएं, क्योंकि आपने देखा एक जनधन योजना है जिसमें बच्चियों के बैंक खाते खुल गए हैं और डायरेक्ट उनको
1: स्कॉलरशिप। जनधन योजना की बात नहीं करते तो ये चर्चा अधूरी रह जाती
2: थी,
1: इसलिए
2: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी,
2: एम्पावरमेंट जो है वो मिला है और सीधे योजनाओं के लाभ उनको मिल रहे हैं। अगर वो उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहती हैं तो वो सहयोग राशि उनको मिल रही है, और फिर जैसा मैंने कहा कि करियर में जब वो आना चाह रही हैं तो वो रुकावटें कम हुई हैं, जो जेंडर बेस्ड रुकावट हुआ करती थी, और अगर वो माँ बन रही हैं तो मैटर्निटी लीव में इजाफा हुआ है। तो ये सारी ऐसी जो सुविधाएं बन रही है, इंटरनल सेल बनने लगी है पॉस्को के तहत और सेक्सुअल हरासमेंट पॉश के तहत,
1: हर वर्क प्लेस,
2: एक वर्क प्लेस पे, तो तमाम संघर्षों के साथ, तमाम जो और चीजें हो रही हैं उनके साथ में भी एक जो सकारात्मक माहौल इन सारी चीजों को लेकर बन रहा है, उससे यकीनी तौर पर महिलाओं को का ना सिर्फ सशक्तिकरण हुआ है बल्कि हम समझते हैं कि आने वाले समय में और सामर्थ्यवान दिखेंगी वो।
0: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने चर्चा की कि बहुत तेजी से भागीदारी बढ़ी है, उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 2,18,00,000 छात्राओं का नामांकन दर्ज हुआ है। ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पहले शिक्षित होना, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना, भागीदारी बढ़ना, ये और बड़ी उपलब्धि है। ये जो डेटा बता रहा है, और आप तमाम जगह हमें हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, कई मामलों में तो लड़के के तुलना में लड़कियां का उपस्थिति ज्यादा है, वो पीछे छोड़ दे रही है, चाहे रिजल्ट का मामला हो या कहीं सिलेक्शन का मामला हो,
2: जी कई परीक्षाओं में ऐसे परिणाम
0: देखने को मिले।
2: हालांकि हम चाहेंगे कि एक समन्वय बना रहे, ये कोई लड़का लड़की वर्सेस ना रहे, लेकिन जिनके पास भी योग्यता है वो आगे
0: है।
2: जी, ये जनधन योजना के आने के बाद से वो ना सिर्फ बचत कर रही हैं बल्कि उनको ये एहसास होने लगा है कि एक खास राशि जो है वो उनके पास है, जिसका वो स्वास्थ्य, शिक्षा या कभी अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए वो खर्च कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस योजना से महिलाओं को विशेष तौर पर बहुत लाभ हुआ है।
0: बैंक अकाउंट खोलने का जो कंसेप्ट आया
2: जी,
0: तो उसी के बाद डीबीटी योजना सफल हो पाई। अब डीबीटी योजना से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है, तो बहुत सी अबला महिलाओं का घर में ही आदर बढ़ गया है।
2: जी,
0: उनके सास का, उनके हस्बैंड का, अगल बगल के पड़ोस का बोलने का लहजा बदल गया है, और उससे वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, एक सम्मान का जीवन भी जी रही हैं और अपनी आवश्यकताओं को अपने ढंग से पूरा भी कर रही हैं। तो ये जनधन योजना के साथ साथ ये जो डीबीटी का जो उसका बेनिफिट ला, उसका सार्थक परिणाम आ रहा है सामने।
1: जी जी, और इन सब योजनाओं का जो एक असर पड़ा है वो है सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात में बच्चियों का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 2014-15 में लिंगानुपात में 1000 लड़कों में बच्चियों की संख्या 918 थी, तो ये 2024-25 में बढ़कर 929 हो गई है।
2: ये सुखद खबर है, और किसी एक योजना को हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि मुझे लगता है कि कलेक्टिव प्रयास जो हुआ है सामूहिक रूप से, कि अब बच्चियों का जन्म लेना जो है वो माता पिता को बोझ नहीं लग रहा, अब बच्चियों का जन्म लेना बल्कि एक सुखद अनुभूति लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें समान अवसर मिलेंगे।
1: और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान शुरू हुआ बेटियों के जीवन रक्षा, संरक्षण और शिक्षा को लेकर, तो उससे हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव बालिकाओं के नजर से भारत में डेवलप होगा।
2: जी निश्चित रूप से, क्योंकि बेटियों को बचाना भी जरूरी था और बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि वो जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, वो परिवर्तन की बयार जिसकी हम कल्पना करते हैं देश में बहने की, वो नहीं बह सकती। तो मुझे लगता है पिछले एक दशक में 12 सालों में सार्थक प्रयास हुए हैं।
1: तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर नेहा तिवारी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर रांची। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आभार, धन्यवाद। आभार।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था महिला सशक्तिकरण। परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर नेहा तिवारी, प्राध्यापक पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम करकट्टा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी

0: प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा बालू उत्खनन पर रोक लगते ही गुमला जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त के आदेश पर आज जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा बालू घाटों और भंडारण स्थलों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नागफेनी नदी घाट पर ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर उसका परिवहन करते हुए पाया गया। इस मामले में खान निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बढ़ते कदम। सूत्रधार कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
2: कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। श्रोताओं, बढ़ते कदम कार्यक्रम की कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके बीच उन तमाम जानकारियों को लेकर आए जिससे हम और आप अपने जिंदगी में एक कदम आगे बढ़े। आज कार्यक्रम में हम बच्चों की बात करने वाले हैं। आज हम कार्यक्रम में बच्चों की क्रिएटिविटी की बात करने वाले हैं। आज हम कार्यक्रम में झारखंड सरकार द्वारा विभाग है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष एक समर कैंप लगाया जाता है जहां पे बच्चों को एक मंच दिया जाता है। और इस बार की बात करें तो रांची के आड्रे हाउस में 26 मई से लेकर 11 जून तक ये आयोजित किया गया है समर कैंप। और विधाएं अलग अलग हैं, चाहे बात आप नृत्य की करें, चाहे बात आप संगीत की करें, बात आप चित्रकला की करें, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की करें, बहुत सारे विधाएं, योग की बात करें, तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनको एक अनुभव मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए प्रत्येक विधा से अनुभवी शिक्षक यहाँ पे उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ। पेंटिंग में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि जब मैं आड्रे हाउस घूमा और देखा कि समर कैंप में किस तरह का रिस्पांस मिलता है, तो बहुत ही एक जब नज़ारा आप देखेंगे कि छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, आकर्षक वो आकृतियाँ उकेर रहे हैं पन्नों पर, तो शुरुआत पेंटिंग से ही करते हैं। हमारे साथ में सर, आपका नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम है गौतम बख्शी।
2: गौतम सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है समर कैंप में आप?
3: बहुत
2: एक
3: अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इतना बच्चों को प्यार मिलता है, बच्चा को अच्छा अच्छा सिखाया जाता है, बच्चा का जो जो प्रॉब्लम है, कोई इंटरेस्ट है पेंटिंग ड्राइंग करने का है, इच्छा होता है, उसको हेल्प कर देता है, उसको बताते हैं कैसे कैसे तुम बनाओगे, किस तरह का कलर होगा।
2: आप पेंटिंग शिक्षक हैं, मैंने देखा कि आप बस पेंसिल उठा रहे हैं और ड्रॉ करते जा रहे हैं। एक पेंटिंग की जब बात करते हैं, अभी के समय में कितना जरूरी है ये बच्चों के लिए?
3: मेमोरी कल्पना जो इमेजिन होता है वो बच्चे का थोड़ा सा डाउन है, उसको पता है देखो हम कैसे बनाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ तक पूरा हो जाता है, तो बच्चे को ऐसा हाँ सर हमको भी बता दीजिए, तो उसको हम बता देते हैं कैसे कैसे करना चाहिए।
2: आपकी ज़िंदगी में जब पेंटिंग की बात करते हैं क्या महत्व रखता है? आप कितने वर्षों से ये कर रहे हैं?
3: हम तो 1982 से लेकर के आज 2026 तक कर रहे हैं। रांची में ही है, रांची में मैंने कॉलेज किया है पढ़ाई अपना, डोरेंडा कॉलेज का। ये बीच के बाद हम कोलकाता में फाइन आर्ट का ये सब किए, अपना आगे का हम अपना क्लास का, पहले हम स्कूल में टीचर थे, गुरु नानक स्कूल में आर्ट टीचर थे, तो आज हमने इसमें हमारा रिटायर हो गए। अब हम उनको इस तरह का अपना पचड़ों को, क्योंकि गरीब लोग है वो नहीं कर पाता है, तो हम सामान भी देते हैं, बड़ा बच्चा का भी मन भी फील होता है, जो गरीब लोग हैं उसको भी मदद करते हैं।
2: बहुत बहुत बधाई सर, और आप बच्चों को समर कैंप में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमने देखा कि आपके साथ सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
2: और अभी हमारे साथ

0: पेंटिंग ही यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, सीख रही हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना कुमारी।
0: संजना, पहले के कैंप में आके कैसा लग रहा है, क्या कुछ अब तक सीखी आप?
1: पहले तो मैं पेंटिंग सीख रही थी, फिर अभी शेडिंग कर रही हूँ।
0: कैसा लग रहा है यहाँ पे आके?
1: अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है।
0: कैसा लगता है कि जब सरकार इस तरह की इनिशिएटिव लेती है जहाँ पे बच्चों को कोई पैसे नहीं देने हैं, और इतना अच्छा समर कैंप जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या कहना चाहती हैं?
1: ये सरकार मतलब अपने हिसाब से एक अच्छा प्रयास कर रही है, ताकि जो हम लोग अपना क्रिएटिविटी और निकाल के ला सके, ऐसे सर लोग को अपॉइंट करते हैं, जिस वजह से हम लोग को भी हेल्प होता है कि हम अपना जो स्किल्स है उसको और अच्छे से सुधार सके।
0: तो इंटरेक्ट भी करती है, टीचर से मिलती हैं, बात करती हैं, आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को?
1: अच्छे से गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है।
0: और अभी एक और स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है बेटा आपका?
2: मेरा नाम श्रेष्ठ राय है।
0: किस क्लास में?
2: मैं 8 डी में हूँ।
0: तो तुम पहले दिन से आ रहे हो जब से यहाँ पे समर कैंप की शुरुआत हुई?
2: हाँ मैम।
0: क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
2: मैंने चित्रकला सीखा, खूब सारे स्टेट के फोक आर्ट को बनाया के बारे में सीखा, और मैंने मंडाला आर्ट भी खूब सारे बनाए।
0: मुझे ये बता, तुम कब से पेंटिंग कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट रखते हो पेंटिंग में?
2: पेंटिंग मेरी एक फेवरेट हॉबी में आती है। मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट लास्ट 5 ईयर्स से है, मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
0: जब पेंटिंग बनाते हो क्या कुछ दिमाग में होता है, जैसे जब यहाँ पे तुम बोले मंडाला आर्ट के बारे में सीखे, कल्चर के बारे में सीखे, क्या कुछ दिमाग में चलता है तुम्हारा जब पेंटिंग करते हो, क्या सोचते हो, कैसे क्रिएट करते हो?
2: मुझे, मैं सच बताऊँ तो हमको SST बहुत अच्छा लगता है, उसका हिस्ट्री पार्ट। तो हम सोचते हैं कि कुछ हिस्ट्री के टॉपिक पे पेंटिंग करें, इसलिए हमको मंडाला आर्ट अलग अलग स्टेट का फोक आर्ट बनाने में अच्छा लगता है।
0: कैसा लग रहा है यहाँ पे, इतने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं?
2: हमको बहुत अच्छा लगता है कि खूब सारे मेरे फ्लैट से भी आते हैं, फिर खूब सारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
0: मम्मी पापा क्या कहते हैं जब तुम घर पे जाते हो या फिर जब पेंटिंग का अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, क्या कहते हैं मम्मी पापा?
2: मम्मी पापा कहते हैं कि और अच्छा करो और आगे बढ़ोगे, फिर मेरा ही मन है कि हम आगे जाके आर्टिस्ट बने।
0: बहुत बहुत बधाई बेटा, और ऑल द बेस्ट, तुम फ्यूचर में अच्छा पेंटिंग करो।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
0: तो आज हम झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित समर कैंप में हैं, और यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से, कैंप में शामिल बच्चों से बात कर रहे हैं। अलग अलग विधा के बच्चों से बात करेंगे, जो योग में है, जो नृत्य में है, और जो, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम शिवांशी सिंह है।
0: शिवांशी किस क्लास में हो?
3: 7A।
0: पहले तो बताओ कि समर कैंप में तुम यहाँ पे आए, इतने सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस माहौल में आके?
3: इस माहौल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको के साथ एक साथ ड्रॉ करने में अपना हॉबी चूज करके अच्छे से सीख सकते हैं।
0: एक कॉम्पिटिशन भी आता है कि, क्योंकि इतना तो ऐसा मौका नहीं मिलता कि इतने सारे बच्चे एक साथ हो, कहीं जाते होंगे तो एक होते होंगे, दो होते होंगे, लेकिन एक साथ इतने बच्चे नहीं होते होंगे।
3: दीदी लोग बहुत अच्छा अच्छा वाटर कलर पोस्टर कलर किए हैं उनके साथ, मुझे भी मन करता है कि मैं अच्छे से बनाऊं, सर को दिखाऊं।
0: तो आप क्या बेसिकली ड्रॉ करते हो, पेंटिंग में क्या पसंद करते हो?
3: आई मोस्टली ड्रॉ वाटर कलर एंड स्केच।
0: क्या करना चाहते हो पेंटिंग में, किस तरह के ड्रॉ ज्यादा पसंद करते हो, किन चीजों पे ज्यादा ड्रॉ करते हो?
3: लाइक सीनरी, एनिमे कैरेक्टर्स, फेसेस एंड ऑल।
0: क्या एक बेनिफिट होता है, क्योंकि जब लोगों से बात करते हैं पेंटिंग की, तो एक इमेजिनेशन की वो हमेशा बात करते हैं। सो तुमको क्या लगता है कि पेंटिंग करने से क्या एक फायदा मिलता है एज अ स्टूडेंट?
3: उसे सीख सकते हैं, बायोलॉजी में आगे चल के बहुत डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ता है, तो उसमें सीख सकते हैं।
0: यहाँ पे जब तुम आए समर कैंप में और गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी इस तरीके से सोचती है, इस तरह का समर कैंप आयोजित करती है?
3: ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जो लोग फीस नहीं भर पाते हैं ड्राइंग के लिए, उन लोग इधर आके बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनका भी आगे चल के कुछ करियर बन सकता है।
0: ओके, थैंक यू बात करने के लिए।
3: वेलकम।
0: आप जब इस समर कैंप को देखेंगे तो यहाँ पे हमारी संस्कृति की हर वो झलक देखने को मिलेगी। एक तरफ बच्चे योगा कर रहे हैं, तो एक तरफ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक्टिंग भी सीख रहे हैं, नाटक मंचन भी सीख रहे हैं। और अब नाटक के ही प्रशिक्षक हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ।
0: ऋषि, पहले तो कैसा लग रहा है जब यहाँ पे कैंप में आप लोग प्रशिक्षक के तौर पे आए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार की यह जो पहल है, बच्चे घर घर में मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं,

0: कम से कम यहाँ 4 घंटा वो बच्चे उनकी जो कला है उनके अंदर जो चीज़ है वो निखर के आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे प्रशिक्षक को इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं जो हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रस्तुति दे सकें, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: एकदम अपने अंतिम पड़ाव में आपका ये समर कैंप है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब नाटक की बात करते हैं तो एक समय में पहले लगता था कि लोग नाटक से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, सो एक नज़र आ रहा है कि माता पिता में भी इंटरेस्ट है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब
0: बच्चों में वो एनर्जी है, उस एनर्जी का बच्चे उसका उपयोग करना चाहते हैं पर उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो छोटे बच्चे जो इच्छुक हैं, आप देखिएगा यहाँ 500 बच्चे हैं इस समर कैंप में और 500 बच्चे के माता पिता को ही इच्छा है कि हमारे बच्चे इस फील्ड में जाए, पेंटिंग में है, योगा है, फैशन शो है, डांस है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि देखिए माता पिता को लगता है ना कि जो काम हम नहीं किए
1: वो हमारे बच्चे करें,
0: वो हमारे बच्चे करें।
1: और सरकार इतना अच्छा मंच भी दे रही है,
0: इतना अच्छा मंच दे रही है, 11 तारीख समापन है, उसी दिन उन लोगों की प्रस्तुति होगी। अब पेंटिंग में देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए, जिन्होंने कभी नहीं बनाया है वो कार्टून बना रहे हैं, डांस में जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है और वो अच्छा भी कर रहे हैं। और जैसे हमारी विधा को ले लीजिए, नाट्य कला को ले लीजिए, हमारे यहाँ भी जो बच्चे उन्होंने कभी नाटक नहीं किया है और जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं हमें भी अच्छा लग रहा है, क्या है कि वो इमोशन को वो फील कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उस फीलिंग्स को ला रहे हैं, तो उनका जो बचपन है वो भी दिख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो युवा हो वो भी दिख रहा है, उसका मिश्रण दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उतने छोटे छोटे बच्चों को जो भी स्क्रिप्ट, और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती है क्योंकि हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं किसी डायलॉग में, वो खुद डिस्कस करते हैं, नहीं नहीं नहीं ये डायलॉग के बाद इसका डायलॉग, देखे ना सर वो डायलॉग बोला ही नहीं, मेरा डायलॉग खा गया,
1: तो बच्चों बहुत बहुत बधाई ऋषि हमसे बात करने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: आइए, ये तो ऋषि थे प्रशिक्षक है, अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जो इस विधा में सीख रहे हैं। और एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, मैंने देखा कि मंच पे वो कुछ नाटक मंचन कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका?
2: श्री।
1: किस क्लास में हो?
2: 4।
1: 4 में। पहले तो ये बताओ समर कैंप में आके कैसा लग रहा है?
2: सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेसलेस हो जा रही हूँ और हॉलीडे होमवर्क्स की भी उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है यहाँ पे आने के बाद।
1: तो आप क्या आप तैयारी कर रहे हो, क्या क्या यहाँ पे सिखाया गया अभी तक?
2: हम लोग एक नाटक कर रहे हैं जिसका विषय है मृदंगिया और उसमें मेरा कैरेक्टर है, मेरा नाम उसमें बुचिया है। मेरी जल्दी से बाल विवाह हो जाती है लेकिन मुझे बाल विवाह करने का मन नहीं था। उसके बाद कुछ ही सालों बाद मेरे पति मर जाता है, उसके बाद मेरे पास सिर्फ मैं और मेरा बच्चा बचते हैं। फिर मैं एक बार एक मृदंगिया को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है, मैं उसके बाद विधवा बन जाती हूँ। लेकिन एक समाज का डर जो अंदर बैठा हुआ था उसे मैं मिटा नहीं पा रही थी और उसी डर ने एक दिन मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया।
1: इसका मतलब है कि एक सोशल मैसेज आप नाटक के माध्यम से दे रही है। कितना अच्छा लगता है आपको ये एक्टिंग करना, इस तरह के मंच पे आना, कितना अच्छा लगता है?
2: हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास।
1: थैंक यू बेटा हमसे बात करने के लिए।
2: वेलकम।
1: समर कैंप की बात कर रहे हैं तो अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं अपनी ही संस्कृति के। अब हमारे साथ शुभम है और ये कथक पे सिखा रही है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। पहले तो मैम ये बताएं कि कैसा लग रहा है जब से समर कैंप की शुरुआत हुई, आप लोग प्रशिक्षक के तौर पे आई और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं।
3: बहुत खुशी हो रही है कि लोग क्लासिकल डांस फॉर्म को वैल्यू कर रहे हैं और आ रहे हैं, इतनी सुबह सुबह आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं कैंप अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है।
1: तो ये एक इनिशिएटिव जो झारखंड गवर्नमेंट का है जो हर साल होता है और इस बार भी इतना बेहतरीन ढंग से हुआ, ये इसको आप लोग कैसे देखती हैं?
3: ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा स्टेप लेकर के आगे बढ़ रही है और ना सिर्फ सोचा है बल्कि प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रियली अप्रिशिएट।
1: तो लाइफ में अगर मैं एक डांस टीचर के तौर पे आपको देखूं किस तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, या आप आप आप इसे कैसे देखती हैं, क्यों जरूरी है बच्चों के लिए?
3: एक तो बच्चों का व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करता है, दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। जो भी बच्चे डांस से रिलेटेड है, आप स्टेज फियर उनका खत्म होता है, स्टेज फियर खत्म होगा परफॉर्मेंसेस करके, तो वो कहीं पे भी वो हेजिटेट नहीं करेंगे, अपनी बात रख सकेंगे, एक कॉन्फिडेंस उनमें आता है। और दूसरी बात कि पढ़ाई में भी जो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ भी कथक में भी हम लोग बहुत सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के साथ साथ इनके बाकी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई हो या और भी एक्टिविटीज़ जो ये लोग करेंगे उसमें भी इनको काफ़ी हेल्प होगा। एंड प्लस फिजिकल एक्टिविटी है तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, उनका पोश्चर्स, वो सब ठीक तो होगा ही।
1: चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात किया, मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का, थैंक यू सो मच।
1: और अब समर कैंप की इसी विधा की एक स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है आपका?
4: रश्मिता।
1: रश्मिता किस क्लास में हो?
4: मैं तो अभी टेंथ में हूँ।
1: टेंथ में हो, पहले तो बताओ समर कैंप ज्वाइन जब से किए आ रहे हो कैसा लग रहा है?
4: मैं कथक में गई हूँ, मुझे पता नहीं था ये बात, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था मैं कहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैम से मिली, मैम बहुत अच्छी है, हम लोग से पहले बात की, उसके बाद फिर हम लोग को एक एक करके स्टेप सिखाया, और फिर धीरे धीरे पता चला कि कथक होता क्या है। कथक एक्चुअली होता है एक कहानी होता है जिसको डांस की तरह हम लोग परफॉर्म करते हैं।
1: तो पहले आप नहीं सीख रहे थे, अभी समर कैंप में आके ही कथक की शुरुआत की हो?
4: हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा।
1: तो अच्छा सा एक्सपीरियंस रह रहा है, लोगों से इंटरेक्शन भी होता है?
4: हाँ, बहुत होता है।
1: दोस्त बने आप?
4: बहुत बने, जितने लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब आके बात करते, बहुत अच्छा है सब।
1: सो अब जब यहाँ पे आए कैंप में, पहली बार आप डांस में आए, क्या एक फर्क पड़ रहा है आपकी पर्सनालिटी पे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला?
4: सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हमें 15 दिन में सीखना है और स्टेज पे जाके उसे परफॉर्म करना है, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसके बाद फिर हाथ का पोस्चर कैसा जाता है, फिर एक होता है सत्कार, उसको किस तरह से हम लोग को करना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।
1: सो एंजॉय कर रहे हो समर कैंप को?
4: हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, 15 दिन मतलब बहुत सही था।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रश्मिका। और हमारे साथ अब अंजलि चक्रवर्ती हैं और ये प्रशिक्षण दे रही हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, यहाँ भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पहले तो आप बताएं कि आप भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के तौर पे क्या कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है इस समर कैंप का?
5: ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ बच्चों के साथ करके। मेरा एक्चुअली मोटो है कि जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, जिसका उसको रिसाइकलिंग करे, रीयूज करे, और उसी से होम डेकोर बना दे, कुछ जो यूज करने वाले चीज है, यूजफुल थिंग्स उसमें बना दे। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक के बॉटल से नेस्ट, अभी बर्ड्स के लिए क्योंकि पेड़ कट जा रहा तो नेस्ट है नहीं, तो दे हम लोग नेस्ट बनाना सिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर जो हम लोग थ्रो कर देते हैं रद्दी में, हम लोग उससे सारा सामान होम डेकोर बना रहे हैं, आपका डिफरेंट बड़े बड़े स्वांस बना रहे हैं, देन आपका बॉटल आर्ट करवा रहे हैं, पेपर बैग्स से नो टू प्लास्टिक्स, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द पेपर बैग्स, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग आइए और देखिए।
1: बच्चों में क्या इंटरेस्ट नजर आ रहा है, और ये जो एक 26 तारीख से शुरू हुआ और अब अंतिम चरण में है, कल परफॉर्मेंस होने वाला है, सो कितना चेंजेस देखे बच्चों में, किस तरह का इंटरेस्ट देखे?
5: बहुत चेंजेस है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि एक वेस्ट चीज जिसको डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं उससे वो लोग एक अच्छे अच्छे चीजें बना दे रहे हैं, जिससे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर लोग देखने आ रहे हैं। ये एक अलग ही स्पॉटलाइट की जगह है, जहाँ शो स्टॉपर बोल सकते हैं कि सभी लोग आकर एक बार जरूर रुकते हैं यहाँ पे।
1: ये जो इनिशिएटिव है झारखंड गवर्नमेंट का, सो इस इनिशिएटिव को आप लोग कैसे देखते हैं?
5: ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर वर्ग के बच्चे यहाँ आकर के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ रहे हैं या फिर नीचे लेवल वाले बच्चे नहीं आ पा रहे, मिडिल क्लास के फैमिली, सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको इतना अच्छा से ध्यान दिया जा रहा है, इवन टीचर्स लोग को भी बहुत अच्छे से केयर, बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे आकर हम लोग करवा रहे हैं। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है, सब लोग एक ही स्तर पे आकर के कर रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट यही है क्योंकि सब इक्वली लर्न कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंजलि जी। एंड एक शिक्षक के तौर पे आखिरी सवाल आपके लिए, भी एक बहुत अच्छा ये अनुभव है?
5: बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि जब बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं एक बिल्कुल बेका हुआ चीज से अगर कुछ बना पाते हैं, कुछ एक लोग उसके आकर तारीफ कर रहे हैं, देखने के लिए सभी लोग आ रहे हैं, अभी एग्जीबिशन शुरू नहीं हुआ बट

0: ज्यादा गर्व की बात कुछ और हो नहीं सकती है, मेरे लिए तो यही है।
1: यानी कि ये जो 26 से लेके 11 तारीख तक ये बच्चे सीखे, अब उसका एग्जीबिशन भी होगा और लोग इसे देखेंगे भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लोग आज के देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे फ्यूचर में वो लोग करेंगे। हम लोग का ये है कि मोटो की सिर्फ ये 15 दिन के लिए नहीं, ये लोग साल भर इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने स्पोर्ट्स वाले बुक का भी बना सकते हैं। ये लोग को बेसिक पूरा नॉलेज मैंने इनपुट कर दिया जितना मिस से हो पाया।
1: एक जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, आपको क्या लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे जिंदगी में क्या चेंजेस लाता है?
0: ये क्रिएटिविटी है, सबसे पहले तो बच्चों को स्मार्ट, ये जो आजकल फोन के लत है इससे दूर करता है। बच्चे अपना हॉबीज इसको अगर इंटरेस्ट में ले लेते हैं तो जो भी खाली टाइम रहता है उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ करते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई का प्रेशर और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, क्रिएटिविटी, कितना हम लोग क्रिएटिव वर्क्स कर सकते हैं उसमें, अपने आप को उसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इतने इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं कि आई होप कि वो लोग थ्रू आउट द ईयर इसको कंटिन्यू रखेंगे, इतना वो लोग के अंदर में आ गया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट से हमारे साथ में, क्या नाम है तुम्हारा?
2: इशिका कुमारी।
1: इशिका, आपका?
2: श्रेया।
1: और आपका?
2: तनुश्री।
1: क्या कुछ सीखने को मिला जब समर कैंप में आए, क्या कुछ सीखने को मिला?
2: We learned a lot of techniques that we don't know. Also, sir, ma'am is very sweet. She is very friendly type.
1: क्या कुछ सीखे?
2: मतलब ऐसा चीज सीखे जो कि हम लोग को पहले पता भी नहीं था, ऐसे ऐसे टेक्निक और ये सब, और मैम इतना अच्छे से सिखाई और इतना अच्छे से बताई इन मतलब सारे दिनों में, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला जो कि मतलब अभी तक नहीं जाना।
1: क्या बनाए प्रैक्टिकली यहाँ पे?
2: प्रैक्टिकली हम लोग मतलब रूम डेकोर एंड ये सब के लिए बहुत सारा चीज़ बनाए हैं, और हम लोग न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा यूज़ करके हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाए हैं।
1: एंजॉय किए यहाँ पे?
2: इतना मतलब बहुत इंजॉय किया, लेकिन इतना मज़ा आया
3: दोस्तों के साथ मिलकर बनाने में, और मज़ा आया,
2: दोस्त बने हैं, बहुत मज़ा आया।
1: किस तरह का एक्सपीरियंस रहा समर कैंप जब आए, क्या एक फ़र्क पड़ा?
3: बहुत मज़ा आया, वी आर वेरी प्रिविलेज दैट हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोग यहाँ पे आए, न्यू फ्रेंड्स बनाए, ये अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को, बहुत खुशी होता है अंदर से।
1: ये एक इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है झारखंड गवर्नमेंट का कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगना है, इक्वली आके सब कुछ सीख रहे हैं।
2: यस ऑफ कोर्स, ये इतना अच्छा मौका है, हम लोग सब एकदम साथ में बैठ के कुछ नया बनाते हैं, वो भी वेस्ट आइटम से, और ज़्यादा हम लोग का मोटिव यही रहता है कि हम लोग वेस्ट आइटम को यूज़ करें, ज़्यादातर उसी को यूज़ करके हम लोग कुछ नया बनाए। स्पेशली हम लोग 3D बनाते हैं, हमने एक 3D स्वान बनाए हैं, वो हम लोगों को सबसे सुंदर लगता है।
1: चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू, वेलकम।
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम शाम्भवी है।
1: शाम्भवी, क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
4: हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हैं, हम लोग जो पहले हम लोग को नहीं आता था वो हम लोग यहाँ आकर बहुत कुछ सीखे, जैसे कि क्ले कैसे बनाते हैं, जो इंसान बहुत गरीब है वो जाके खरीद तो नहीं ना सकता बाहर से, तो हम लोग वही पेपर मैशेस से क्ले बनाना सीखे हैं यहाँ पे।
1: समर कैंप में आए, मज़ा आया क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे आए?
4: हाँ, हम लोग को बहुत मज़ा आया, अलग अलग फ्रेंड्स बनाने में बहुत मज़ा आया।
1: तो समर एंजॉय किए समर हॉलीडे को?
4: हाँ, हम लोग बहुत एंजॉय किए।
1: आपका क्या नाम है?
5: निष्ठा सिंह।
1: निष्ठा, आप यहाँ भी क्या सीखे?
5: मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक सीखे जिससे हम लोग अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, और हम लोग इससे बहुत सारी चीज़ों को
1: घर को डेकोर कर सकते हैं।
5: हम डेकोर कर।
1: किस क्लास में हो? 5 में। एंजॉय किए यहाँ पे आके, हॉलीडे अच्छे से मनाए अपना। क्या आप इंटरेस्ट क्या रखते हो आगे के आर्ट एंड क्राफ्ट में, और भी बहुत कुछ सीखना है?
5: और भी बहुत कुछ सीखना है, मेरा पैशन है आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बात करने के लिए। और अब क्योंकि हम कार्यक्रम की बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, और बिना योग साधना मेडिटेशन के कैसे हमारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं? मैम आपका नाम क्या है?
6: पूजा तिवारी।
1: तो पूजा मैम, पहले तो आप भी बताएं कि एज अ योगा टीचर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे समर कैंप का?
6: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आजकल घर घर तक योगा पहुँच गया है और सभी लोग योगा करना चाहते हैं और योगा के फायदे को भी समझ रहे हैं।
1: कितना एक ज़रूरी आप मानती हैं, जिस तरह से आज लाइफ में हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं उसमें योगा कितना बड़ा रोल निभा रहा है?
6: बहुत ज़रूरी है, योगा अभ्यास के बिना अब जीवन संभव नहीं है। बीमारियां बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, खासकर मानसिक बीमारियां, इससे बचाव के लिए योगाभ्यास से जुड़े रहें, मेडिटेशन करते रहें, योगाभ्यास में लगे रहें।
1: कितना एक इंटरेस्ट देखिए बच्चों का समर कैंप में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आके यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पेरेंट्स क्या कहते हैं जब बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो, और बच्चों का इंटरेस्ट कैसा आपने देखा?
6: बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, इन लोगों को मजा आता है, बॉडी फिटनेस होता है, सब कोई फिटनेस के लिए अवेयरनेस है, इसलिए बच्चे भी करना चाहते हैं और साथ में पेरेंट्स भी करना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम हमसे बात करने के लिए।
6: ओके थैंक यू, धन्यवाद सभी को।
1: क्या नाम है बेटा आपका?
7: सर सूर्यांश।
1: तो सूर्यांश, योग करके पहले तो बताओ कैसा लग रहा है?
7: अच्छा लग रहा है।
1: हाँ?
7: अच्छा लग रहा है।
1: तो समर के आप में शुरू से आ रहे हो?
7: नहीं, दो दिन बाद से आए।
1: दो दिन बाद से आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला?
7: सीखने को तो बहुत, मतलब अच्छा सा योगा आसन सीखने को मिला, फिटनेस मेरा सही रहेगा इसके कारण।
1: क्या नाम है बेटा आपका?
8: समीक्षा।
1: समीक्षा, आप भी योग में हो? मजा आ रहा है यहाँ पे? क्या मजा आ रहा है? सुबह आ जाते हो? क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे बताओ, क्या क्या सीखे?
8: यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे।
1: दोस्त बनाए यहाँ पे?
8: मैंने बनाया।
1: कैसा रहा समर हॉलीडे?
8: अच्छा रहा,
1: बहुत अच्छा रहा।
8: हाँ।
1: चलो थैंक यू बेटा। तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हमने समर कैंप के सारे एक्टिविटीज को शामिल किया। जब झारखंड सरकार की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष ये समर कैंप लगाया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों के लिए। और एक समर कैंप की बात करते हैं, कोई पैसे नहीं लगने हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, चाहे डांस की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, चाहे योग की बात करें, अलग चाहे नाटक की बात करें, तमाम विधाओं में बच्चों को इस 15 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और ये जो समर हॉलीडे बच्चों का होता है वो क्रिएटिविटी के साथ बढ़ता है। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बढ़ते कदम। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम 5:02 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में, साथ में समसामयिकी पर आधारित जानकारियां और रोचक तथ्य भी आपसे साझा किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। इसमें आज चर्चा का विषय है एक धारा अनेक संस्कृतियां आपसी सम्मान और एकजुटता से सुंदर संसार विषय पर। आधुनिक असम के शिल्पकार गोपीनाथ बारदोलोई जयंती पर आधारित एक चर्चा होगी। नशा पान से बिखरते परिवार विषय पर भी कुछ जरूरी सूचना और जानकारियां दी जाएंगी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रशांत गौरव।

खेती बाड़ी कार्यक्रम 6:02 पर और 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया कार्यक्रम। खेती बाड़ी कार्यक्रम में 6:02 से आप सुनेंगे इस कार्यक्रम को। प्रश्नोत्तरी का विषय है मिट्टी की जान हरी खाद। इस विषय पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति भी संजीव कुमार लाल की ही है। हमारी दुनिया कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हिंदी वार्ता आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व विषय पर। वार्ताकार हैं जयंत कुमार पांडे, इनसे बातचीत। आप ये वार्ता सुनेंगे जयंत कुमार पांडे से। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की होगी। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे शाम के 7:00। 7:11 पे जिले में आजकल और प्रायोजित कार्यक्रम 7:45 पे।

7:15 पे आप सुनेंगे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम मुंडारी भाषा में है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे और रात्रि 8:10 पे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण विषय पर और रात्रि 9:30 पे चर्चा का विषय है। कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे नाटक आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पे। इस कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खां प्रस्तुत करेंगे राग रामदासी मल्हार में एक रचना। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

ये था कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म बात एक रात की से, स्वर था हेमंत कुमार का, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का। और श्रोताओं आइए आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

देश परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। रचना अमित खन्ना की थी, संगीत किशोर कुमार, माफ करेंगे, आवाज किशोर कुमार की थी, संगीत राजेश रोशन का था। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। फिल्म चोरी चोरी का ये गीत है, रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा से आवाज मोहम्मद रफी की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

या समझ लो एक हुते बेपीर हूँ, अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक

0: फिल्म ससुराल का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का था। और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनूं।

0: फिल्म वक्त का गीत अभी आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में, रचना साहिल धानवी की है। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 110.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की सराहना की। साथ ही देश की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कामना की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकास करना भी है। NDA समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि 2 दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाय भाषा केंद्र से FM 101.7 मेगा हर्ट्ज पे।

सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस सभा में आज आप सबों के साथ मैं हूँ राधा। नमस्कार। कार्यक्रम के आरंभे आज सांध्यकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बताते चले। अब से थोड़ी देर बाद कुछ ही पलों में संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका आशा भोसले के गाए चंद फिल्मी नगमे। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इसमें मोटे अनाज की खेती पर चर्चा होगी। साथ ही मक्के की खेती पर जानकारी देंगे और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

संध्या 7:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष श्रृंखला प्रादेशिक कार्यक्रम सुनेंगे। सरकार के 12 वर्ष विषय इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

भाषा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे रात्रि के 11:00। और आज की सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायिका आशा भोसले के गाए चंद फिल्मी नगमे। पहला गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आदमी और इंसान से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद श्रोताओं का पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। आप सुन रहे हैं एक ही गायिका आशा भोसले को, वक्त की आवाज़। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं।

ठाकुर जरनैल सिंह। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अरशद भोपाली के गीत थे, संगीत गणेश का था। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं पे संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे एक ही गायिका आशा भोसले को।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम के साथ हैं कोमन नायक।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं किसान भाई बहनों आप सभी अच्छे होंगे। आज मोटे अनाज की खेती इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे, साथ ही आनंद लेंगे कुरमाली लोकगीत का और सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता। मोटे अनाज जिन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है, मोटे अनाज की खेती करना बहुत ही आसान और फायदेमंद है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी जैसे फसलें शामिल हैं। इन्हें बहुत कम पानी, कम खाद और खराब जमीन पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेत की जुताई के लिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए खेत को दो से तीन बार गहरी जुताई करनी चाहिए और पाटा

लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ डालें। मोटे अनाज आमतौर पर खरीफ की फसल है, यानी बरसात के मौसम की फसल है। इनकी बुआई जून से जुलाई के बीच करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक से जरूर उपचारित करें ताकि फसल में बीमारी ना लगे। बीजों को छिड़कने के बजाय पंक्तियों में बोना सबसे अच्छा होता है। कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें और बीज को 1 से 2 इंच ज़्यादा गहरा ना बोएं। किसान भाई बहनों, इन्हें मुख्य रूप से बारिश के पानी से ही पोषण मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी या जल भराव से फसल खराब हो सकती है, इसलिए खेत में पानी ना रुकने दें। उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्व कम हो तो बुआई के समय थोड़ा नाइट्रोजन और फास्फोरस दें। फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाए तो पहली निराई गुड़ाई करें। मोटे अनाजों में कीड़ों और बीमारियां बहुत कम लगती है, फिर भी किसी समस्या के लिए आप जैविक कीटनाशकों या नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें जब पौधे और बालियां सुनहरे रंग के हो जाए तब फसल की कटाई करें। कटाई के बाद धूप में सुखाएं और बीजों को अलग करें। मोटे अनाज की खेती कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा देती है, क्योंकि बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आप भी चाहे तो इनकी खेती से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको जानकारी दी मोटे अनाज की खेती। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आनंद लेते हैं कुरमाली लोकगीत का संतोष महतो और साथी के स्वरों में।

प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी

0: है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डोबरो सुंडी जी से, जो कि रामपोसी गांव के निवासी हैं। डोबरो जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार।
1: डोबरो जी, आप कितने सालों से मकई की खेती कर रहे हैं?
2: मैं लगभग 4 साल से खेती कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो मकई की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी का होना जरूरी है?
2: जी दीदी, इसमें मकई की खेती के लिए बालुई दोमट की मिट्टी होनी चाहिए।
1: अच्छा
2: जी,
1: और मकई लगाने से पहले मिट्टी या खेत की तैयारी कैसे करते हैं?
2: जी, इसमें देसी हल से 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं, उसके बाद पट्टा से बढ़िया से समतल कर देते हैं
1: मिट्टी को।
2: जी, मिट्टी को।
1: अच्छा, जब मिट्टी या खेत की तैयारी कर लेते हैं या कर लेने के बाद, कौन सा खाद का इस्तेमाल करते हैं आप?
2: जी, हम लोग इसमें खेत की तैयारी के साथ साथ जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, घर में ही जो तैयार करते हैं, गोबर खाद बोलते हैं।
1: अच्छा
2: जी, इसमें खाद? जी, इसमें प्रति एकड़ 1 से 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली जो पीछे में होता है उससे 1 से 2 ट्रैक्टर लगता है
1: पूरे खेत में।
2: जी,
1: छिड़काव करते
2: प्रति एकड़ में,
1: कि हल करते वक्त ही खाद का इस्तेमाल?
2: जी, हल करते वक्त ही।
1: अच्छा
2: जी, उसमें रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी को रासायनिक खाद को उतना ही उपयोग करते हैं जितना फसल को जरूरत
1: होता है और मिट्टी को भी जितना जरूरत होता है।
2: जी
1: जी, तो मकई का पौधा लगाते हैं या फिर बीज लगाते हैं?
2: इसमें हम लोग बीज से लगाते हैं।
1: अच्छा, बीज खरीद के लाते हैं या फिर घर में पहले से ही आप लोग इसका जो रखे हुए रहते हैं?
2: इसमें हम लोग खरीद के लगाते हैं।
1: अच्छा, मार्केट से लाते?
2: जी, मार्केट से लाते हैं।
1: जी, तो बीज लगाते हैं, तो बीज को लगाने से पहले उसका मतलब उपचार करते हैं या उपचारित पहले से ही रहता है?
2: जी, उसमें खरीदा वाला बीज में उपचार हुआ रहता है।
1: अच्छा
2: जी, इसमें अपना तरफ से देखते हैं, जैसे खराब दिखता है उसमें अपना खराब बीज को हटा देते हैं।
1: जी, ताकि जी। वो पौधा खराब ना निकले।
2: जी, खराब ना निकले।
1: जी, तो पौधा से पौधा लगाते हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
2: पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और अच्छा। कतार से कतार की दूरी 2 फीट।
1: अच्छा
2: जी,
1: और उसका तरीका कैसे है लगाने का मकई?
2: हम लोग जब बीज को लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसके ऊपर हल्का मिट्टी और खाद के साथ उसके ऊपर
1: ढक देते हैं की तरह। जी जी, और कितने दिन बाद वो बीज पौधा बनकर भूमि से ऊपर उभर आता है?
2: जिसमें अंकुरण बीज के हिसाब से होता है और नमी के हिसाब से होता है। नमी जितना खेत में होता है उसके अनुसार भी होता है। 10-15 दिन
1: बाद वो पौधा निकल
2: जी निकल सक
1: जी। और खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं, जैसे घास फूस निकल आए हों तो?
2: जी, जब फसल 20 से 21 दिन के होने पर पहली निदाई होता है, उसमें घास भी हम लोग निकालते हैं और दूसरी निदाई 40 से 45 दिन में कर देते हैं।
1: अच्छा,
2: और समय समय पर घास हम लोग हटाते हैं, अगर नहीं हटाते हैं तो पौधा जो बढ़ता है उसको बढ़ाने में
1: उसका ग्रोथ नहीं
2: ग्रोथ नहीं बन पाता है।
1: जी, तो इसकी खेती किस मौसम में करते हैं?
2: इसकी खेती आजकल मक्का की खेती पूरे वर्ष भर की जाती है, मगर प्रमुख रूप से खरीफ मौसम में की जाती है।
1: अच्छा,
2: जैसे जून से अगस्त के बीच में
1: करते हैं
2: जी।
1: तो अभी करना चाहिए। आपने जो अपने

0: बगान या खेत पे लगाया हुआ है वो किस महीने में लगाया
1: वो
0: था?
1: हम जून का फर्स्ट सप्ताह में लगाए हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: और अभी तक वो कितने बड़े हो गए हैं?
1: अभी तो पल्स निकलना शुरू हुआ है
0: अच्छा, वो
1: जी,
0: पूरी तरह हुआ नहीं है?
1: पूरी तरह हुआ नहीं है
0: जी
1: जी
0: क्या मकई में कीट लगते हैं?
1: जी लगता है।
0: जी, कौन सा कीट लगता है?
1: इसमें प्रमुख रूप से साइनिक कीट मक्का में अधिक नुकसान करता है
0: अच्छा, तो
1: जी।
0: इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं?
1: इसके रोकथाम के लिए, इसका बचाव के लिए सबसे पहले गर्मी की जुताई, गर्मी जुताई होनी चाहिए, और दूसरे नंबर में बीज उपचार कर फसलों को लगाना चाहिए, और तीसरा नंबर में संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद फसल चक्कर को अपनाना होगा। जैसे हम फसल चक्कर में मक्का के बाद अरहर
0: लगा सकते
1: लगा
0: हैं
1: सकते हैं
0: जी।
1: जी।
0: और डोबरो जी, हमारी जो मकई है उसको कीट से या रोग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: इसमें रिजेंट GR का नाम से दवा आता है,
0: अच्छा।
1: उसमें जैसे घुटना तक आ जाता है पौधा, उसमें ऊपर से दानेदार टाइप का होता है रिजेंट GR, ऊपर से दो तीन दाना गिरा देते हैं
0: अच्छा, कितनी
1: जी
0: बार? एक ही बार देते हैं?
1: जी जी एक ही बार देते हैं
0: अच्छा। और कौन सी किस्म का मकई लगाए हुए हैं आप?
1: जी। हम कंचन का लगाए हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो इसमें मतलब ये मकई कैसा होता है?
1: इस कंचन वैरायटी में दाना अच्छा बड़ा बड़ा होता है,
0: जी।
1: फल भी बड़ा बड़ा होता है, उसके बाद हम लोग लगा भी सकते हैं दोबारा
0: अच्छा,
1: जी।
0: ये फसल कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है?
1: ये फसल 90 से 100 दिन में बनकर तैयार हो जाता है।
0: अच्छा, और इसकी तुड़ाई कब करते हैं?
1: इसकी थोड़ाई, इसमें हम लोग मकई को देख के पता चल जाता है जैसे दाना तैयार हो गया कि नहीं तैयार हुआ है, इसमें हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद बाजार ले जाते हैं।
0: अच्छा, तो ये गांव से बाजार तक मकई कैसे ले जाते हैं?
1: इसमें हम लोग का यहाँ गाड़ी सब चलता है, माल ढुलाई गाड़ी सब,
0: अच्छा।
1: उससे ले जाते हैं, और कभी कभार हम लोग अपना मोटरसाइकिल से भी पीछे में बांध कर
0: ले जाते
1: ले
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: तो मकई, एक मकई का कितना मतलब दाम रखे हैं आप?
1: इसमें हम हिसाब किए, कम से कम एक मकई में 5 रुपया करके भी हिसाब किए, तो प्रति एकड़ में 20 हजार से 25 हजार रुपया मुनाफा आएगा
0: अच्छा, मकई के साथ साथ और क्या आपने खेतों में लगाए हुए हैं?
1: हाँ, उसमें मकई के साथ साथ भिंडी भी लगाए हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: भिंडी में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है?
1: जी हो जाता है
0: अच्छा, तो अभी लगाए हुए हैं,
1: जी, लगा हुआ है,
0: कितने दिन मतलब कितने महीने हो रहे हैं लगाए हुए हैं?
1: लगा है वही मक्का के साथ साथ ही लगाए हैं, 1 जून में ही लगाए हैं,
0: अच्छा
1: जून का पहला हफ्ता में।
0: जी।
1: हमारे किसान भाई से मैं यही कहना चाहूँगा जो मक्का के साथ साथ भिंडी भी लगा सकता है, क्योंकि भिंडी ये हर रोज देने वाला फसल है
0: जी।
1: जी।
0: तो आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में मैं यही देना चाहूँगा कि कुछ एक फसल के साथ दो फसल लगाने से ठीक रहेगा,
0: क्योंकि एक के साथ तो वो दूसरा फसल भी अगर लगाते हैं तो उनको डबल मुनाफा भी
1: डबल
0: हो सकता है।
1: मुनाफा मिलेगा
0: जी,
1: जी।
0: तो डोबरो जी, आपने हमारे किसान भाई बहनों को आज बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे भेंट वार्ता और भेंटवार्ता का विषय था मक्का की खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डोबरो सुंडी। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं पंच परगनिया लोकगीत ब्रजमोहन लोहार और शक्ति के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चाबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो, शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। दुमका जिले में युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी है। इसी के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर 113 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया, जिनमें 14 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रन से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से, और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। कार्यक्रम के साथ हैं राम सिंह चातर।

Oh, akala yung tinaka bundok ko, aling ramas niya tarik niya, tumuli mong te johar. At ikat singa akala ling sang mo jut, tiyak doon nalaka min a, maang tubo ay may ahero, duling chuy deo gamin atik niya. Juri ko ta ayate, ente yung tiling ay malibu chi, abu, baba bu herke ayate, chanap do, busu do jan patrio kabu, agu ju itine sumeng uri, kira ko jomiri ko ti alagin, marin do busu uite, chilike wichasiya, inasagay, japagar, lagi doling ayo mari buwe enate nen japagare moron sing jagam thikni ela ujuk ni enate ayar pado andi doling lachme se na thikni juri ko ta ate bu ayo miya enate akas bani na a upunishi gel sed me hobajana enari japagaro bu ayo miya chike marindo tesing e akada ling ter setan o mar ela bu ayo mli ya inka do na barsing chasri ado abu inka do muruk chas mentade bu mita mendo muruk chas sumere abu वैज्ञानिक को यदि को कजी तेने ची गामा बुगीते का अभाव अची अब ए लगे ची किसान को लगे चास्तन हो को लगे बुगीते होयो गामा का ए बटया और यदि गामाया एंड दो मिसते के गामा चबाया और बेड़ा होते कोरिया आचास नोले टीक ते का अभाव मैंने को कजी तेन तिया तो होट कर गे अब ए चास को निलका अभाव और दबू उसी तेन तिया दुर करा निलकते मार चास गई जब पगर लोते आयर पाबू अयुम लिया इलाबू ने चुई दियोगा मना तक जुड़ी को आयतने दूरेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम मनोरमा। आज इस कार्यक्रम के साथ होंगी बसंती बिरुआ।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, साथ ही अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं, कभी तेज बारिश तो कभी बहुत तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में जल्दी तबीयत खराब होने के आसार बढ़ जाते हैं। बदलते मौसम में शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने में समय लगता है, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए हाइड्रेटेड रहें, मौसमी फल खाएं और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें। बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे खान पान और पोषण का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और पानी की कमी से थकान और सिर दर्द हो सकता है, इसलिए दिन भर में आप पर्याप्त पानी पीते रहें। नारियल पानी, छाछ और ताज़े फलों के जूस भी आप लेते रहें, इससे शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहेगा। और साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर मौसम बदलने पर संक्रमण का खतरा रहता है। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं और बाहर का खाना खाने से ज़रूर बचना चाहिए। तो बहनों, इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो बदलते मौसम में भी हम सुरक्षित रहेंगे। बहनों, आइए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत से।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
5: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की

0: मोर्चा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
1: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
2: वरना मंगलोरा को गांव बड़गरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
3: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
4: मितुम बुरन सिंह तामसाय अनुता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना ये व्यापार में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिटा
5: अन्य मितुम दो बुंबई कोड़ा
0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे रायते बनाने की रेसिपी के बारे में। रायते की रेसिपी हम किस तरह से बनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं निर्मला। तो आइए हम सुनते हैं ये वार्ता।
2: जोहार, मैं ख्रिस्त पूर्ति आप सभी के साथ रायते के रेसिपी को बताना चाहती हूँ कि रायते को हम किस किस प्रकार से बनाकर खा सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में। तो आज बहनों, रायता गर्मियों में जो न सिर्फ खाने में स्वाद को बढ़ाता है बल्कि शरीर को भी ठंडक देता है। तो फिर चलिए आज हम रायते के रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कद्दू बीज अंगूर रायता बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें

कुछ देर बाद हम इसे खाने के लिए परोस सकते हैं, जो कुछ हमें ठंडक भी देगा। इस प्रकार हम जानेंगे कि दूसरा विधि है या दूसरा रायता है बैंगन और अखरोट का रायता, जो हम इन सामग्रियों के साथ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैं एक मध्यम आकार का बैंगन लेंगे, 2 कप दही, 1 मध्यम आकार का प्याज जो बारीक कटा हुआ हो, 2 या 3 अखरोट, 2 हरी मिर्च बीज निकालकर बारीक काट लें, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया जो बारीक कटा हुआ हो और नमक। इसे हम इस प्रकार तैयार करेंगे। बनाने की विधि, बैंगन पर सरसों का तेल मल लें और गैस पर भून लें। बैंगन के ऊपर से जला हुआ छिलका निकाल लें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम बैंगन को अच्छी तरह मैश कर लेंगे और इसमें दही मिलाकर फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद अब हम इसमें हरा मिर्च, हरा धनिया, अखरोट और नमक मिलाकर फिर अच्छी तरह से फेंट लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फिर जब हम खाएंगे उस समय हम इसे परोस सकते हैं, जो हमें गर्मियों के मौसम में आसानी से मिल भी जाएंगे और हमें राहत भी देंगे। अगला है कुरकुरे करेले का रायता, जिसमें ये सामग्री की ज़रूरत है हमें। 2 कप मध्यम आकार के करेले जो पतले स्लाइस कटे हो, 2 कप दही, 1 मध्यम आकार का प्याज जो बारीक कटा हो, 2 हरी मिर्च बीज निकालकर हम बारीक काट लें, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया जो बारीक कटा हुआ हो और 1/4 चम्मच भुना जीरा, नमक और तेल। इसे हम इस प्रकार बनाने की विधि है, जो इस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले करेले को हल्के हाथ से छील लें और इसके स्लाइस काट लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, करेले के स्लाइसेस को तल कर निकाल लें। दही में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा और नमक मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें और जब हम परोसेंगे उसके पहले कुरकुरे करेले डालकर हम तुरंत कटोरे में परोसेंगे। इससे कुरकुरे, मतलब इससे करेला का कुरकुरापन नहीं ख़त्म होगा, जो हमें कुरकुरे करेले के रायते में अच्छे लगेंगे। और इसके बाद हम आपसे और एक रायता बनाने की विधि बताते हैं, जिसके लिए हम अगला है रायता पुदीना अनार व सेव रायता, जिसके लिए हमें इन सामग्री की आवश्यकता होगी। 2 कप ताज़ा दही, 2 बड़े चम्मच अनारदाने, 2 बड़े चम्मच फीके सेब, 2 या 3 हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 बड़े चम्मच ताजे पुदीना के पत्ते जो बारीक कटे हों और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम इस प्रकार बनाएंगे। फीके सेब छोड़कर दही में सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर फेंट लेंगे और कुछ देर हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। अंत में जब हम खाने के लिए परोसेंगे उससे पहले ही हमें फीके सेब को मिलाकर इस रायते को हम परोसेंगे। तो बहनों, हम जानेंगे कि

इन रायतों का फ़ायदा लेकर हमें शरीर के लिए भी हमें फ़ायदेमंद होंगे और गर्मियों में हमें गर्मी से भी राहत प्राप्त होगा। धन्यवाद।

तो बहनों, अभी आप वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे रायते की रेसिपी के बारे में, और अभी आपने वार्ता के माध्यम से जाना तरह तरह के रायते रेसिपी को बनाने की विधि के बारे में, और इस विधि को बता रही थी ख्रिस्त पूर्ति। तो उम्मीद है बहनों, आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहनों, कार्यक्रम के अंत में आइए हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम मनोरमा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से क्रमशः प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र, 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी, मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी का नामांकन वैध घोषित, नाम वापसी का कल आखिरी दिन, जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना, कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आयोजित जेपीएल के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जन कल्याण के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। आपने देखा, करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी को इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है।
6: मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 25 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जो गरीबों की चिंता करने का काम विगत 12 वर्षों से किया है। जो व्यक्ति इलाज के अभाव में तरस करके काम में मर जाता था, जो भूखा व्यक्ति पेट में खर्चा बांध करके पेट के बल 100 रुपए भूख मिटाता था, आज किसानों से पूछे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है।
4: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दो दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद श्री नाथवानी के नामांकन को वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इससे राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी कल तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
7: यूरिया डीएपी जो है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केंद्र सरकार से ही हम लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पे युद्ध चलने के कारण भी इन चीजों का निर्यात में कमी आया है। राज्य के किसानों को भी अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए 59,340 बूथ लेवल एजेंट BLA2 की नियुक्ति की है। इधर झामुमो की ओर से बोकारो में BLA के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने SIR से संबंधित जानकारी दी।
8: अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और BLA2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे।
4: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कनेक्टिविटी से दूर है। गांव की मुखिया सुनीता देवी का कहना है कि 2 वर्ष पहले पुल निर्माण को लेकर निविदा हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की विफलता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल और पक्की सड़क के लिए क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं।
9: पोखरिया से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है, उसी से आवागमन अभी हो रहा है। यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, जो अभी तक कार्य स्टार्ट भी नहीं किया गया है। यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है।
4: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के अगले 3-4 दिनों में राज्य

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM की 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहा है अमरा टोला चाबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। बड़ा नेमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। न्यू कॉलोनी नेमडी चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनिश अंश, अंशु मुन्ना। बड़ा वसुंधरा कॉलोनी सेंट्रोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन, मीना पवन। छोटा नीमडी चायबासा से बाबूराम, शांति देवी, रीति, कोमल, रोहन। तुली टोला चायबासा से सुनना चाहा है मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, अर्पिता कुमारी, लाडू, सुमित ठाकुर, दुलरी ठाकुर, भोला रजक, बुच्ची, खुशी कुमारी। न्यू कॉलोनी टुंगरी से रश्मिता महतो, स्वाति महतो, विश्वजीत महतो, अभिजीत महतो, आर्यावीर, तेजस, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, उर्मिला देवी वैष्णवी, रीना जायसवाल। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

0: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
1: डायल कीजिए 8700014242.
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है.
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
8: तुम लोग बुरन सिंह तमसा है अनिता तमसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रियल तपाम ना रियल वाह बेटा निका
9: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं बुरी बुरी ने बागिया तोड़ के ये दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तम दूर दम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप इलेक्शन अलिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते इन्हें आप इलेक्शन.
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं

0: उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इन संदेशों के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं।

और अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं राधा, नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन का ये सुंदर सा गीत। उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। इसे सुनना चाहा है बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्यामदेव नायक और देवेंद्र बाबू। गांव गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु, रमेश, वनवाली, सिद्ध कुमारी और पूजा बेसरा परिवार। गांव पोंडाकाटा से सावन महले, नरसिंह महले, रॉकी महले, कविता महले, हर्षमणि महले, पार्वती महले, सुहानी महले, संजय सोरेन, नंदनी महले, संजीव महले, विजय बेसरा। महुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी वंदनी, आयुष महतो, गीतेश संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु, तनु भाई, नंदू भरतू। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन का ये खूबसूरत सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

तेरे नाम, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, यांश ठाकुर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पटेल नगर भलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, आफे रेलवे रोड गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डी एच बच्चन। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की राजू, विनोद, गीता, रीता, सुनीता देवी, अनामिका कुमारी। आप और आप हैं औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे नाम का ये खूबसूरत सा गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में।

सिर्फ तुम, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। गांव लोहगढ़ ठाकरा फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनाल सिंह, अविराज सिंह, गुमनाम सिंह,

सिंह आप हैं, सादुल सह राजस्थान से, ओम प्रकाश चौहान, मुन्ना प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, बेरडी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार, तनु कर्मकार आप हैं, सरायकेला पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू, सोना एफएम, शिवा मुंडरी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये खूबसूरत सा गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में, और अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। जावेद अख्तर के गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश किया है आदर्श नगर भलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंजी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना और विपुल कामड़े। और आप हैं बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गविनकर, धीरज सब्बा सेरे। और आप हैं शिवाजी चौक राजे छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नशीम बेगम, आयशा खान, हदया खान, आसमा सालिया, शोएब खान पोत्रा, मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और इसी गीत को फरमाइश भेजा है सुनने के लिए जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गग जेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहुजा, निमित विशाल गगनेजा। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है क्रांति। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहनी महतो, दीनबंधु महतो। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन दीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यशुब आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांधी नगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक, मीका विरक। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, परभनी से सी आर कुलकर्णी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कोरा कागज़ का ये खूबसूरत सा गीत। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता शिल्पी, लिपि, दीपाली गोप, कुचाई बिद्री से केपी सेठ, सोए दुर्गामती, सरिता राजकुमारी, रश्मि विशाल, मुन्ना सन्नी, गांव सूराबेड़ा से महा सिंह सरदार, कमल सिंह, अंशु वीरू सरदार, और आप हैं बड़ा बम्बो गोपालपुर, संतोषी महतो, जय महतो, बड़ा बम्बो सुपाई साय से इंद्रजीत ताती, मधुरानी दास और दृष्टि। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और आप हैं आम खोड़रा रेंगा खार से राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप, दक्ष प्रिया नेताम। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोरा कागज़ का ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां फलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025 से बीच में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने
2: समय
0: के लिए
2: पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई

0: संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
4: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है. और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
3: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
4: Aaj desh ka har nagrik Vikasit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा. देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है. और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.
3: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.
5: It is a historic tribute to India's longest-serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुए जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद NDA सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देख तो सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान इजहार है कि NDA की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है, जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
1: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तिसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी मजबूरी का।

0: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमत अंजाम देने का जश्न मनाने को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमत अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,300

0: 1998 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबिना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी देगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा, जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और अवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। खुबूस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरसों से भारत की इक्तिसादी और तरक्याती पेशरफ्त की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसनाई के, पपुआ न्यूगिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इक्तिसादी एतबार से गोना गोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंड

0: नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
1: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर इस्लाहात अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इनेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब सफर की तफसील बताई।
0: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएम ईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल, नो लिमिट्स फॉर यू।
1: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तक रोनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं।

0: आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल

0: देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं, जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं। ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल

0: फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है। साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है।

0: उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है। यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है, आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यदि कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार कर रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं, ये तो मार्केट में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, प्रैक्टिकल कदम लेकर किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है,

0: भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए। ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी,
2: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
0: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए निश्चित लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
5: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.7 MHz पे। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गजल गायक जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और ये अगली गज़ल आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गज़ल।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से गजलों का कार्यक्रम महफिल में एक ही गायक कलाकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजल।

और अब गज़लों का कार्यक्रम महफिल का ये आखिरी गज़ल आज आप सुन रहे हैं चित्रा सिंह और जगदीश सिंह की गाई चंद गज़ल।

जगजीत सिंह चित्रा सिंह की गाई गजलों के साथ ही हमारा कार्यक्रम महफिल अब यहीं पे संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे एक ही गजल का एक कलाकार जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। तो कार्यक्रम महफिल को यहीं पे विराम देते हैं और अगला कार्यक्रम शुरू के रंग में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत सा नगमा।

क्षमा करें श्रोता, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोहिनूर का गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मेरे अपने इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। अगला गीत सुनने से पहले ये सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, मुद्दत। और अभी कार्यक्रम का आखिरी गीत है आशा भोसले की और मोहम्मद अजीज की आवाज़ है। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है बाप्पी लहरी ने।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग अभी पे समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम आकाशवाणी के जावासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open Tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Inés Castillo, 21-13-21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं, समाप्त होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:55 पर पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।